दोस्तों, जिंदगी भी कितनी अजीब है ना। हम सारी उम्र धन दौलत नाम और पहचान बनाने में लगा देते हैं, लेकिन आखिर में साथ जाता क्या है? ना ये दौलत ना ये शोहरत साथ रह जाते हैं तो बस हमारे किए हुए कर्म और लोगों के दिलों में छोड़ी हुई हमारी यादें। किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देना, किसी जरूरतमंद का हाथ थाम लेना, किसी दुखी इंसान को दो मीठे बोल कह देना, शायद यही तो दौलत है जो हमारे जाने के बाद भी हमारे साथ रहती है।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चुका है 5:39 और 18 सेकंड। भोर सुहानी कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मीना चौहान।

दोस्तों, जब मौसम सुहाना हो, हवाओं में ठंडक हो और मन में खुशी की एक मीठी सी लहर उठ रही हो, तो लगता है जैसे प्रकृति भी हमारे साथ गुनगुना रही है। कभी कभी एक हल्की सी हवा भी पुराने दिनों की कोई खूबसूरत याद दिला देती है और चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है।

0: പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ, ഇന്നത്തെ പുലർവേട്ടം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. പുലർവേട്ടം വീണ്ടും നാളെ രാവിലെ 7 മണിക്ക്. എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും ഒരു നല്ല ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. ഇനി 8 മണിക്ക് സമാചാർ പ്രഭാത്, തുടർന്ന് മോർണിംഗ് ന്യൂസ് ഡൽഹി റിലേ.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार. सरकार ने कहा, लोगों के बीच किसी भी राशि के यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा. महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र में किसानों के लंबित भुगतान के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने का निर्णय लिया. दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की घोषणा की. राष्ट्रीय राजधानी के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 10,000 विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण भी स्वीकृत. भारत अमरीका संयुक्त युद्धाभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन रेंज में शुरू. न्यूजीलैंड संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने का विधेयक पारित किया और भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई. सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा. वित्त मंत्रालय ने कहा कि छोटे व्यापारियों के लिए 0 व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेन देन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रुपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे. इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेन देन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा. छूट दर केवल 2,000 रुपए के अधिक के निर्दिष्ट व्यापारी लेन देन पर ही लागू होगी. हमारे संवाददाता ने बताया है कि कुल छूट दर संग्रह के 5% से छोटे व्यापारियों को यूपीआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित कोष स्थापित किया जाएगा.
2: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2,000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेन देन पर लागू होगा. मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं. मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें. 2,000 रुपए से अधिक के P2M लेन देन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी. वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेन देन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रुपए प्रति लेन देन होगी. वहीं व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी P2PM श्रेणी के तहत UPI QR कोड के माध्यम से हर महीने 1,00,000 रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों को सभी लेन देन पर अनिवार्य रूप से 0 MDR की सुविधा जारी रहेगी. इसके अलावा व्यक्तियों के लिए मुफ्त UPI लेन देन पर कोई मासिक सीमा, लेन देन की संख्या की सीमा या अलग अलग स्रोतों के आधार पर कोई कैप नहीं है. अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: गन्ना किसानों और चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है. हमारी संवाददाता ने बताया है कि निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया.
3: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी. श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा. बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में गन्ना किसानों को FRP का लगभग 99.5% का भुगतान हो चुका है और FRP भुगतान के मामले में महाराष्ट्र देश में पहले स्थान पर है. आकाशवाणी समाचार, मुंबई.
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने 26 हेक्टेयर बंजर भूमि केंद्रीय गृह मंत्रालय को निशुल्क हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह भूमि

0: अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए दी गई है।
1: मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख सांस्कृतिक, धार्मिक और रणनीतिक केंद्र के रूप में उभरा है। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, विशिष्ट अतिथि और पर्यटक लगातार वहाँ आ रहे हैं। ऐसे में इस इलाके की सुरक्षा संवेदनशीलता काफी बढ़ गई है। खन्ना ने कहा कि इस क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से अयोध्या में एनएसजी की तैनाती स्थायी तौर पर जरूरी हो गई है। एनएसजी केंद्र की स्थापना राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अयोध्या में किसी भी संभावित सुरक्षा चुनौती से निपटने में सहायता करने के उद्देश्य से की जा रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दी है। एक रिपोर्ट।
2: ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवा जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। आमतौर पर प्रत्येक आशा कार्यकर्ता लगभग 2,000 लोगों या 400 परिवारों से जुड़ी होती हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले 10,000 छात्रों के लिए छात्रावास बनाने का भी निर्णय लिया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास के 22वें संस्करण का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली में आयोजित किया गया। औली प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस समारोह में दोनों सेनाओं के 600 सैनिकों ने भाग लिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अभ्यास औली के साथ साथ राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है।
5: इस अभ्यास का उद्देश्य पर्वतीय और अर्ध पर्वतीय क्षेत्रों में संयुक्त सैन्य अभियानों के लिए दोनों सेनाओं की क्षमता बढ़ाना है। इसमें पैदल सेना आधारित अभियानों पर विशेष जोर दिया जाएगा। अभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं परिचालन पद्धतियों का आदान प्रदान करेंगी और संयुक्त योजना एवं संचालन को मजबूत करेंगी। प्रशिक्षण में निगरानी और टोही के लिए ड्रोन तथा स्वायत्त प्रणालियों का उपयोग किया गया है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आधुनिक हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन भी होगा। दोनों सेनाओं के विशेषज्ञ उभरती तकनीकों और बहुक्षेत्रीय युद्ध से जुड़े विकास पर विचार भी साझा करेंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर श्री चौहान राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करेंगे और प्रभावित किसानों के परिवारों से भेंट करेंगे।
6: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने दौरे की शुरुआत पटना के तिघवारा और मनेर के बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वेक्षण से करेंगे। इसके बाद वे हाजीपुर के तरसिया और सरायपुर गांव का दौरा करेंगे। पटना में श्री चौहान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में बाढ़ की स्थिति, आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों तथा प्रभावित किसानों को दी जा रही सहायता की समीक्षा की जाएगी। बिहार में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 15 जिलों में लगभग 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अभिषेक दास, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
7: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95%

0: निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही सभी भारतीय सामान न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त मिलेंगे। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश करने पर सहमति जताई है। समाचार कक्ष से अमीषा।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत में अपनी मजबूत आर्थिक नींव, निजी क्षेत्रीय गतिशीलता और बढ़ती तकनीकी क्षमताओं के बल पर वैश्विक विकास को गति देने की क्षमता है। कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने ये बयान भारत की 5 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद जारी किया है। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी से मुलाकात की थी। अमरीकी सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर मध्य और दक्षिण अमरीकी सरकार को देगी। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्लोवाकिया, उत्तरी मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को दी जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस धनराशि का उपयोग अमरीका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। नई दिल्ली में कल अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने 15वें ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने सर्वाधिक 57 रन बनाए। नीतीश कुमार रेड्डी ने 3 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में ही खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी आज ऐसी ही स्थिति रहेगी। बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में अगले 2 दिन गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज ऐसी ही स्थिति रह सकती है। वहीं केरलम में एर्नाकुलम, पत्तनमथिट्टा और इडुक्की जिलों में तेज वर्षा की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड और कन्नूर जिलों में तटीय इलाकों में ऊंची लहरें उठने की भी चेतावनी दी गई है। नेपाल में बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। करीब 5,170 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 13,742 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 6 राज्यों के बीच हुए जल समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की गागर में बढ़ेगा जल, यमुना भी होगी स्वच्छ। पत्र के अनुसार 32 किलोमीटर लंबी झील बनवाने का प्रस्ताव, 97,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। दैनिक जागरण के अनुसार 8 दशक से लंबे किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों के बीच समझौता। अमर उजाला लिखता है, 90% पैसा केंद्र का, 4 राज्यों को पानी, 2 को बिजली का लाभ। जनसत्ता का शीर्षक है, निर्यात की छलांग, व्यापार घाटा कम, चालू खाते ने लगाया गोता। पत्र के अनुसार निर्यात 26.12% बढ़कर $44 अरब हुआ। लोकसत्ता के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विमर्श 2026 सम्मेलन में कहा, AI और ड्रोन से बदलेगा भविष्य का युद्ध, रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर और सुरक्षित भारत की आधारशिला। पंजाब केसरी ने बाल सुरक्षा जरूरी शीर्षक से लिखा है, भारतीय कानून के सामने झुका बेटा, बच्चों के यौन शोषण की सूचना देने को राजी। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, ट्रंप प्रशासन को झटका, अमरीका में नए स्टूडेंट वीजा नियमों पर कोर्ट की रोक, डाक मतपत्र पर रोक का ट्रंप का प्रस्ताव खारिज। राजस्थान पत्रिका ने सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा निर्णय देते हुए लिखा है, डॉक्टर उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में ही रहेंगे, 31 साल पुराने फैसले में दखल देने से इनकार। फैसले से मरीज चिकित्सा सेवाओं में कमी पर उपभोक्ता आयोग में जा सकेंगे। दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, उत्तराखंड में केदारनाथ पैदल मार्ग पर अब हेलमेट के बिना एंट्री नहीं, गिर रहे पत्थर, 100-100 के जत्थे में जा रहे श्रद्धालु, 21 किलोमीटर रास्ते पर 13 डेंजर जोन।

0: संग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: स्वागत करती हूँ आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। मैं हूँ आपकी चिर परिचित मित्र विमलेश। नमस्कार श्रोता मित्रों, तो करते हैं एक सुंदर विचार से शुरुआत, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं, हमें जीवन मिला है एक दूसरों में खुशियां बांटने के लिए, इसलिए हमें हमेशा दूसरों के जीवन में खुशियां और सौहार्द बांटना चाहिए। धन्यवाद आपका संदेश के लिए। और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम। चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू रविन्द्र, रौनक सेन। और इसके साथ साथ ही संदेश मिला है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। वो लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम के द्वारा सुंदर व उपयोगी प्रस्तुति के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी जी का, ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे, ग्राम नजीरपुर पोस्ट मोती नगर मसौदा जिला अयोध्या से राजा बाबू शर्मा, रामबाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेन्द्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा जी का। धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पर्यावरण से संबंधित लघु लोक कथाओं और परंपराओं की। आपको विशेष रूप से ये बता दें कि इस सप्ताह हम जो लोक कथाएं या प्राचीन मान्यताएं लेकर आए हैं, उनमें हमने प्रयास किया है कि वैज्ञानिकता और तर्क से बढ़कर लोगों की प्राचीन मान्यताओं को सामने लाएं, जो आज भी हमें महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। लोक कथाएं और मान्यताएं भी बहुत कुछ कहती हैं, ये भी इतिहास का स्रोत हैं। इसी क्रम में आइए चलते हैं जापान के घने जंगलों में। आज हम बात करेंगे जापान की बहुत प्राचीन पर्यावरण संबंधी मान्यता कोदामा की। कोदामा एक मान्यता है जो सदियों से जापान के पर्वतीय और वन्य क्षेत्रों में चली आ रही है। इसके अनुसार कोदामा यानी पेड़ों की आत्मा। भारत की बात कहें या किसी भी देश की, वहां की प्राचीन मान्यताओं में अक्सर एक बात मानी जाती है कि जंगल या पेड़ों पर जीवात्मा या प्रकृति की आत्मा वास करती है, क्योंकि पेड़ों में भी जीवन है। आपको बता दें कि यदि जापान में लोग किसी पुराने जंगल में जाएं और यदि वहां कोई बहुत पुराना बहुत विशाल पेड़ दिखाई दे, तो लोग उस वृक्ष का अभिवादन करते हैं और उसे बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वे मानते हैं कि पेड़ केवल लकड़ी, फलों, औषधियों और छाया का ही स्रोत नहीं है, लेकिन इस पर कोदामा का निवास हो सकता है। तो कल्पना कीजिए श्रोताओ, आप जापान में हैं और किसी जापानी टूरिस्ट गाइड के साथ समूह में जंगल घूमने गए हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और अचानक आप सबकी नजर एक बहुत पुराने पेड़ पर पड़ती है, जिसका तना इतना विशाल है कि उसे कई लोग मिलकर भी शायद पूरी तरह घेर न पाए। वो मातृवृक्ष है जो लगभग आधे जंगल का पोषण कर रहा है। तो ऐसे पेड़ को देखकर आपको गाइड जरूर बताएगा कि जापान की लोक मान्यता के अनुसार ये केवल पेड़ नहीं है, इसमें कोदामा का वास और आशीर्वाद है, इसीलिए लंबी आयु इसे मिली है। गाइड कहेगा कि पुराने पेड़ों का विशेष सम्मान करें, क्योंकि वे मातृवृक्ष हैं और आसपास के जंगलों को उन्होंने ही उगाया है, उससे ही दूसरे छोटे पेड़ों को जीवन मिला है। साथियों, और यही बात कोदामा की परंपरा को पर्यावरण की दृष्टि से बहुत रोचक बना देती है, क्योंकि जब किसी समाज को ये महसूस होने लगे कि पेड़ में भी जीवन है, पेड़ का भी सम्मान है, तो कुल्हाड़ी उठाने से पहले, उनकी अंधाधुंध कटाई करने से पहले वो समाज 10 बार सोचेगा, और यही पर्यावरण के प्रति सच्ची जागरूकता है। कोदामा की लोकमान्यता हमें आधुनिक भाषा में एक बहुत सुंदर विचार देती है, पेड़ों और प्रकृति को केवल संसाधन मत समझिए, उसे जीवन का आधार समझिए। सचमुच कितनी अद्भुत बात है ना श्रोताओ। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं ये लकड़ी है, ये पानी है, ये जमीन है, लेकिन प्रकृति हमें शायद ये याद दिलाती है, मैं केवल तुम्हारे उपयोग की वस्तु नहीं हूँ, मैं तुम्हारे जीवन का आधार हूँ। श्रोताओ, भारत, जापान, अमेरिका और दुनिया के सभी देशों में प्रकृति के प्रति ऐसी मान्यता है जो हमें संदेश देती हैं कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति और पेड़ों को कितनी गहरी और सम्मान की दृष्टि से देखा था। तभी तो हमारे भारत में भी पेड़ों या वनस्पति को नमन किया जाता है। तो उमंग के हमारे प्रिय श्रोताओं, जब भी किसी पुराने पेड़ के पास से गुजरें, एक पल जरूर रुकिए, उसकी छाल को देखिए, उसकी शाखाओं को देखिए और सोचिए, इस पेड़ ने हमसे पहले न जाने कितनी ऋतुएं देखी होंगी, कितनी पीढ़ियां आईं और चली गईं, और ये पेड़ हमें सांस और जीवन देता हुआ अब भी खड़ा है। और शायद यही प्राचीन जापानी परंपरा कोदामा की सबसे सुंदर सीख का सारांश है, क्योंकि जिस दिन से हम पेड़ों को केवल काटे जाने वाली लकड़ी के रूप में देखना बंद कर देंगे, उसी दिन से शायद हम जंगल को भी केवल जमीन का एक टुकड़ा समझना बंद कर देंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जापान की कोदामा परंपरा पर। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वॉटर। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित ये एक संगीत प्रधान कार्यक्रम है, जिसके द्वारा बताया गया है कि निरंतर अभ्यास और कार्य करते रहने से असंभव से भी असंभव लगने वाला कार्य संभव हो जाता है।
3: हेलो चिल्ड्रन।
4: हेलो मैम।
3: हाउ आर यू ऑल?
4: वी आर फाइन मैम।
5: आई एम गुड मैम।
3: वेरी गुड, वेरी गुड दैट यू ऑल आर गुड। डू यू लाइक गोइंग टू द गार्डन?
4: यस मैम, आई लाइक इट।
3: व्हाट डू यू सी इन द गार्डन? टेल मी Vanya, Soham, Lavish, what do you see in the garden?
6: I see beautiful flowers.
3: And any other thing that you like in a garden?
7: I like sitting under the tree.
3: And you, Soham?
8: I like to see butterflies.
3: Yes, butterflies are really beautiful. Now tell me, do you hear something in the garden? Children, tell me. Any sound?
4: Yes, ma'am.
7: Yes, ma'am. I listen to the sweet chirping of birds.

0: So children, you have just heard this song. What did we learn? Tell me.
1: Little things together make big things.
0: Little things together make
2: big things.
0: Yes. So, if all of you little children live together with love and kindness, you will spread happiness all around.
3: लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत. और अब सुनते हैं कार्यक्रम श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन. इस कार्यक्रम में महान तपस्वी, दार्शनिक और चिंतक श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के बारे में एक सुंदर नाटक द्वारा समझाया गया है और उनकी शैक्षिक प्रविधियों की चर्चा की गई है.
4: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदों के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे. शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं. प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन.
5: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ. उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो. अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया. उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए. यहां बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के कॉलेज में प्राध्यापक हो गए. इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया. उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की.

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पांडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को रामकृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र रामकृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ

0: आने वाला हर व्यक्ति अमिट स्मृतियां लेकर वापस जाए।
1: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
0: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
1: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
0: राम कृपाल
1: जी,
0: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
1: हाँ,
0: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
1: जी,
0: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
1: अच्छा,
0: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
1: जी,
0: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
1: वो क्या था सुबोध जी?
0: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है, वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
1: जी,
0: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती में कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
1: जी,
0: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करे। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
1: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
0: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
1: जी,
0: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
1: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
0: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
1: जी,
0: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
1: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
0: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
1: हाँ,
0: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
1: और ब्रह्मचर्य?
0: राम कृपाल
1: जी,
0: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
1: जी,
0: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
1: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
1: जी,
0: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
1: जी हाँ,
0: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें एक दो विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
1: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
1: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
0: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
1: जी,
0: अब सवाल ये है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आए। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है। उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं, बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में सभी 6 इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: 6 इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो 5 ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल 6ठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये 5ों इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
1: जी,
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल।
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

0: श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पौंडेचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्षद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: अपार।
1: ठीक है, तो अब उत्तर इस प्रकार होगा, संपन्न समाज। पढ़िए,
0: संपन्न समाज,
1: स्वाधीन राष्ट्र,
0: स्वाधीन राष्ट्र,
1: क्षुद्र जीवन,
0: क्षुद्र जीवन,
1: असीम शक्ति,
0: असीम शक्ति,
1: अपार आनंद,
0: अपार आनंद।
1: अब सुभाष चंद्र बोस ने उपयुक्त विशेषताओं के साथ इन शब्दों को रखा है, आप किन विशेषताओं के साथ इन उपयुक्त शब्दों को रखना चाहेंगे और क्यों, तो आप भी इस तरह बता सकते हैं। अगला शब्द, अन्य शब्द, अखंड के बदले कैसा शब्द हम जोड़ना चाहिए, सत्य के पहले शाश्वत, शाश्वत सत्य। पढ़िए,
0: शाश्वत सत्य, उन्नत समाज, विकसित राष्ट्र, उज्ज्वल जीवन, युवा शक्ति, सच्चा आनंद।
1: ठीक है, तो अन्य शब्द इस प्रकार है, शाश्वत सत्य, उन्नत समाज, विकसित राष्ट्र, उज्ज्वल जीवन, युवा शक्ति, सच्चा आनंद। आदि देव पढ़िए,
2: शाश्वत सत्य, उन्नत समाज, विकसित राष्ट्र, उज्ज्वल जीवन, युवा शक्ति, सच्चा आनंद।
1: ठीक है, विपरीतार्थक शब्द और उनके प्रयोग, और उस पर एक स्वाधीन राष्ट्र, इस वाक्यांश में रेखांकित शब्द स्वाधीन का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द है पराधीन। इसी प्रकार के कुछ विपरीतार्थक शब्द आगे दिए गए हैं, लेकिन वे आमने सामने नहीं है, रेखाएं खींचकर विपरीतार्थक शब्दों के सही जोड़े बनाइए। प्रश्न इस प्रकार है, स्वीकार, सार्थक, विषमता, क्षुद्र, संपन्न, अकर्मण्य, मरण। इसके स्तंभ दो में दिए गए उत्तर इस प्रकार है, कर्मण्य कर्मठ, विपन्न, अस्वीकार, जीवन, निरर्थक, समानता, विशाल या बृहत, विराट, महान। कौन पढ़ेगा इसका उत्तर?
2: मैं पढ़ूंगा अध्यापिका जी। स्वीकार का विलोम शब्द है अस्वीकार, सार्थक का विलोम शब्द है निरर्थक, विषमता का विलोम शब्द है समानता, शुद्र का विलोम शब्द है विशाल, बृहत, विराट या महान, संपन्न का विलोम शब्द है विपन्न, अकर्मण्य का विलोम शब्द है कर्मण्य या कर्मठ, मरण का विलोम शब्द है जीवन।
1: ठीक है, अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाषण का एक अंश पढ़ा है, इसे तरुण के स्वप्न शीर्षक दिया गया है, अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। ये शीर्षक क्यों दिया गया होगा, शीर्षक के बारे में भी हमें चर्चा करना चाहिए, तो इसका उत्तर कौन पढ़ेगा?
0: मैं पढ़ूंगा।
1: ठीक है, पढ़िए अभिनव।
0: इसका उत्तर मैं पढ़ूंगा, स्वतंत्रता और विकसित राष्ट्र देश के युवाओं का सपना होता है, देश के हर नौजवान सपना देखते हैं कि वे राष्ट्र की उन्नति में अपनी सार्थक भूमिका निभा सके, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर सबके साथ मिलकर तरक्की करे। इससे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाषण को तरुण के स्वप्न शीर्षक दिया गया है।
1: तो बच्चों, ये पाठ हमें सिखाता है कि जीवन में ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करें, निरंतर मेहनत करें, कभी हार न माने और अपने ज्ञान तथा प्रतिभा का उपयोग समाज और देश की उन्नति के लिए करें। सच्ची सफलता वही है जो स्वयं के साथ साथ दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाए। आज के कक्षाएं हम समाप्त करते हैं, धन्यवाद बच्चों।
2: धन्यवाद अध्यापिका जी।
3: अभी तक आप सुन रहे थे हिंदी पाठ, अध्यापिका थे अर्चना टीआर, छात्र थे आदिदेव अभिनन प्रशांत। इसी के साथ आज का हिंदी पाठ यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।

0: सञ्चार सूचकांकः प्रख्यापितः। विद्युद्वाहनानां अंगीकरणे नवदिल्ली शीर्षस्थाने, महाराष्ट्र कर्नाटक राज्ये च द्वितीय तृतीय स्थाने वर्तेते। सऊदी अरब देशेन हूथी विद्रोहिणां ड्रोन विमानं निरुद्धम्। भविष्यदाक्रमणानां विरोधे दृढ़ पदक्षेपाणां संचेतना। हूथी समूहेन आक्रमण वार्ता प्रत्याख्याता। अपि च हरियाणा राज्ये चंडीगढ़े पंजाबे पूर्वोत्तर भारतस्य च कतिचित् भागेषु अद्य अति तीव्र वृष्टेः वर्तते पूर्वानुमानम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामनः दृढ़तया प्रतिपादितवती यत् सर्वकाराय समर्प्यमाणेषु कर संबंधी प्रस्तावेषु मानांक न्यूनीकरणस्य, करमुक्तेः सौविध्यप्रदानस्य च याचनायाः अपेक्षया राष्ट्रं प्रथमम् इति भावः सर्वोपरि स्थापनीयः। सा अद्य बेंगलुरुनगरे अन्ताराष्ट्रिय कर अनुसंधान विश्लेषण प्रतिष्ठानेन आयोजिते नवयुग कराधान विषये द्विदिवसीय सम्मेलनस्य उद्घाटन सत्रे संबोधयन्ती आसीत्। मंत्री शिक्षाविदः शोधकर्तृन् चिन्तकाञ्च समाहूय स्वतंत्र करनीति संशोधनं सार्वजनिक संवादस्य नियमितं भागं कर्तुं आदिष्टवती, यस्य परीक्षणं समाह्वानं परिष्कारश्च कर्तुं शक्यते। केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन कर्मचारी भविष्यनिधि संघटने अनिवार्य अंशदानाय विहिता मासिक वेतन सीमा 15,000 रूप्यकेभ्यः संवर्ध्य 25,000 रूप्यकाणि यावत् निर्धारिता। अद्य मंत्रिमण्डल उपवेशनानन्तरं वार्ताहरान् संबोधयता सूचना प्रसारण मन्त्रिणा अश्विनी वैष्णवेन विज्ञापितं यत् अनेन निर्णयात्मक पदक्षेपेण 150,000+ अतिरिक्ताः कर्मचारिणः ईपीएफओ अनिवार्य सामाजिकावरणे आगमिष्यन्ति, येन श्रमिकेभ्यः सामाजिक सुरक्षा कवचस्य बृहद् विस्तारो भविष्यति। अस्मिन् निर्णये सर्वकारस्य वार्षिकः व्ययभारः प्रायः 41,300,000+ संभाव्यते।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51,00,000 एम्प्लॉइज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: मन्त्रिणा न्यरूप्यत यत् 4,200,000+ 14,200,000+ दशकेऽस्मिन् भविष्यनिधेः वेतनसीमा अपरिवर्तिता एवासीत्। तदनन्तरं 14,200,000 वर्षस्य सितम्बर मासे इयं सीमा 15,000+ यावत् संवर्धिता। श्रीवैष्णवेन विशेषतया प्रतिपादितं यत् वर्तमानेन निर्णयेन सैव नीतिः अग्रे प्रसारिता, यतो हि विगतवर्षेषु वेतनवृद्धेः आयसंवर्धनस्य औपचारिक उद्योगक्षेत्रस्य निरन्तरविस्तारस्य च परिप्रेक्ष्ये इयं सीमा 25,000+ यावत् विहिता। विदेशमन्त्रालयेन अद्य नवदिल्ल्यां पाकिस्तान उच्चायोगस्य कार्यवाहकप्रमुखः आहूतः, अथ च समुद्रे पाकिस्तानीय नौसेनाघटकस्य अस्वीकार्यव्यवहारं विरुध्य तीव्रापत्तिः प्रकटिता। मन्त्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये स्पष्टीकृतं यत् यद्यपि अन्ताराष्ट्रिय जलक्षेत्रे घटितायामस्यां घटनायां कापि महती क्षतिः न जाता, तथापि एषः व्यवहारः 91,000+ वर्षस्य अप्रैल मासे भारत पाकिस्तानयोः मध्ये सैन्य अभ्यासानां युद्धाभ्यास सञ्चालनस्य सैन्यसञ्चारस्य च पूर्वसूचना विषये सम्पन्नस्य सन्धेः सर्वथा प्रत्यक्ष उल्लङ्घनमस्ति। विदेशमन्त्रालयेन पाकिस्तानस्य प्रभारी राजनैकः निर्देशितः यत् सः सम्बद्ध पाकिस्तानीय अधिकारिभ्यः इदं सन्देशं प्रेषयेत् यत् भविष्ये एतादृशीनां दुर्घटनानां निवारणार्थं सर्वे सैन्यघटकाः आवश्यकावधानं वर्तयेयुः। अथ च उभयोः पक्षयोः मध्ये सम्पन्न द्विपक्षीयसन्धेः प्रावधानानां पूर्णसम्मानं कुर्युः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले डब्ल्यू

कहते हैं कि जब हौसलों में फौलाद और रगों में जीतने का जुनून हो तो कठिन से कठिन चुनौती घुटने टेक देती है। जापान के आइची नागोया की धरती पर आयोजित होने वाले एशियन गेम्स 2026 में इसी की वानगी पेश करने के लिए भारतीय दल तैयार है। इस बार उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी पिछली बार की तरह न सिर्फ पदकों का शतक पार करेंगे बल्कि मेडल्स के नंबर्स को उससे भी आगे ले जाएंगे। हमें इस बार सभी खेलों में न सिर्फ पदक बल्कि स्वर्णिम सफलता की उम्मीद है। हमारे जांबाज एशिया के सबसे बड़े खेल मंच पर तिरंगा लहराने और पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ने के दृढ़ संकल्प के साथ मुकाबले को तैयार है। 4 सालों की कठिन तपस्या और कड़ी चूर मेहनत से निकले पसीने की बूंदों से आची नागोया की जमीन को सींचा जाएगा और फिर उससे सोने चांदी और कांसे के पदकों की फसल लहलाएगी। इन्हीं उम्मीदों और आशाओं के साथ आकाशवाणी की तरफ से पेश है विशेष श्रृंखला चीयर फॉर भारत। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे पदकों की सबसे बड़ी

0: उम्मीद शूटिंग कुश्ती बॉक्सिंग तीरंदाजी और स्क्वाश की। इन खेलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान, भारत की युवा महिला पहलवान सारिका मलिक और खेल पत्रकार अभिषेक रॉय। हमारे साथ सारिका मलिक मौजूद हैं तो सवालों की शुरुआत कुश्ती से ही करते हैं। सारिका, चाहे एशिया का सबसे बड़ा खेल मंच एशियन गेम्स हो या फिर दुनिया का सबसे बड़ा खेल मंच ओलंपिक, कुश्ती एक ऐसा खेल है जिसमें हमें पदकों की सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है। पिछली बार एशियन गेम्स में हमारे पास एक सिल्वर समेत कुल 6 पदक थे। अब खुद कई प्रतियोगिताओं में भारतीय टीम की सदस्य रही हैं और अपने साथी खिलाड़ियों की प्रतिभा को अच्छी तरह से जानती हैं। इस बार कुश्ती में क्या उम्मीदें हैं?
1: इस बार कुश्ती से हमें पहले की तरह ही बहुत उम्मीदें हैं। भारत में कुश्ती खेल जो है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण खेल माना जाता है, बहुत ही फेमस खेल है। ओलंपिक्स में और एशियन गेम्स में हमेशा ये मेडल देता है। हर ओलंपिक्स में आप देख सकते हैं 2004 से कुश्ती ने मेडल दिए हैं, और एशियन गेम्स में भी हर साल 4 से 5 मेडल तो कम से कम कुश्ती देता ही है। इस बार भी हमारी जो टीम है वो बहुत ही शानदार तैयार हुई है, बहुत ही अच्छे प्लेयर्स उसमें हैं। आप बात कर सकते हैं निशा दहिया की, जो कि आपने ओलंपिक्स में भी देखा था, उनको इंजरी जरूर हुई थी ओलंपिक्स में, लेकिन उनका जो प्रदर्शन था वो बहुत ही शानदार था। आप बात कर सकते हैं सुजीत कलकल की, जो कि अभी फिलहाल वर्ल्ड नंबर 1 चल रहे थे, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडेंट आप बोल सकते हैं, वो रेसलिंग में हैं और उनसे पूरी उम्मीद है कि वो गोल्ड ही लेके आएंगे। आप देख सकते हैं दीपक पूनिया, एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी जो हैं, और मानसी हलावत है, मनीषा भनवाला है, प्रिया मलिक हैं जो कि 2 बार की जूनियर वर्ल्ड चैंपियन हैं। तो टीम हमारी बहुत ही अच्छी है और हम हमेशा की तरह उनसे बहुत उम्मीदें लगाए हुए हैं।
0: तो अभिषेक, कुश्ती दल में होंगजू एशियन गेम्स के मेडलिस्ट दीपक पूनिया, अमन सहरावत और अंतिम पंघाल फिर से मौजूद हैं। आपको लगता है कि आची नागोया में गोल्ड मेडल का बैरियर टूटेगा और हमारे खाते में स्वर्णिम सफलता भी आएगी?
2: बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने पहले भी मेडल इस प्लेटफॉर्म में ये जीत चुके हैं, तो इनको पता है कि किस तरह का कंपटीशन होगा, क्या लेवल है। और जहां तक अंतिम पंघाल का बात करें तो वो 2-time वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट है, उनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। पेरिस ओलंपिक्स में उनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से उन्होंने टर्न अराउंड किया है, लगातार वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है इंटरनेशनल लेवल पे। दीपक पुनिया एक नए वेट क्लास में आ रहे, वो 86 में थे, अभी इस बार वो ऊपर 97 में आ रहे, लेकिन उनका एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस इस प्लेटफॉर्म में काम आएगा। सुनील कुमार जो ग्रीको रोमन में 87 में, वो भी काफी अच्छा खिलाड़ी है, वो भी मेडल जीत चुके थे लास्ट टाइम, तो ये एक काफी एक्सपीरियंस और यंग टीम का कॉम्बिनेशन है रेसलिंग में।
0: सारिका, एशियन गेम्स से पहले पहलवानों की तैयारियों पर खास ध्यान दिया गया, उन्हें न सिर्फ एक्सपोजर के लिए बाहर भेजा गया बल्कि विदेशी जमीन पर ट्रेनिंग भी दी गई और फॉरेनर कोच ने भी हमारे पहलवानों को ट्रेनिंग दी, इसका कितना फायदा इस बार मिलेगा?
1: बिल्कुल, इसका काफ़ी फ़ायदा आपको इस बार एशियन गेम्स में देखने को मिलेगा। मैं खुद नेशनल कैंप में रह रही हूँ और ट्रेनिंग कर रही हूँ नेशनल कैंप में, तो हमारे गर्ल्स रेसलिंग में फॉरेन कोच हैं, जापनीज कोच अकाशी, जो कि बहुत टेक्निकल हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे वर्ल्ड स्टेज पे जापान जो है वो वुमेन्स में लीड करता है। आप वर्ल्ड चैंपियनशिप देख सकते हैं, आप ओलंपिक्स देख सकते हैं, तो जापान के 2 से 3 गोल्ड आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। तो जापानीज कोच हमें उनकी टैक्टिक्स बताते हैं, टेक्निक्स बताते हैं, कैसे उनके साथ कॉम्पीट करना है, क्या उनकी स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी हमें लेके चलनी है, अपना ट्रेनिंग प्लान जैसे हमारा चेंज किया गया है। उनका मानना है कि जैसे बाउट्स अगर दिन में होती हैं तो हमारी ट्रेनिंग भी दिन में ही होनी चाहिए, जो हमारी बाउट प्रैक्टिसेस होती हैं।
0: अच्छा।
1: स्पीड वर्क पे उन्होंने बहुत फोकस किया है, एंड्योरेंस पे। साथ ही हमारे हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर इयान बटलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं हर तरह से। तो ऐसे ही फ्री स्टाइल में आप देख सकते हैं कोच शाको हैं, सेम अभी जो फ्री स्टाइल की टीम थी वो आर्मेनिया ट्रेनिंग के लिए गई थी, ट्रेनिंग कैंप था, बहुत अच्छा फॉरेन एक्सपोजर था। उसके बाद रशिया में उन्होंने एक टूर्नामेंट खेला जिसमें उन्हें रशियन रेसलर्स के साथ कॉम्पीट करने का मौका मिला, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे रही। सुजीत कलकल ने वहाँ पे गोल्ड जीता, विकास कालीरमन ने ब्रॉन्ज जीता, और उनके साथ ही बहुत सारे इंडियन रेसलर्स को वहाँ पे फॉरेन एक्सपोजर मिला और प्लेयर्स के साथ कॉम्पीट करने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। सेम अगर हम देखें तो ग्रीको रोमन की जो टीम है उसके अंदर भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। आप सुमित मलिक को देख सकते हैं, सुनील कुमार को देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं। उनके साथ भी कोच गोगी जो हैं वो लगे हुए हैं उनकी ट्रेनिंग कराने के लिए। तो बहुत ही अच्छा एक्सपोजर, बहुत ही अच्छी

0: ट्रेनिंग, बहुत ही अच्छी प्रिपरेशंस जो है वो रेसलर्स की चल रही हैं।
1: अभिषेक, एशियन गेम्स में हमारा 15 सदस्यीय कुश्ती दल भाग लेने जा रहा है। इसमें पुरुष फ्री स्टाइल में अमन सहरावत 57 किलोग्राम, सुजीत कलकल 65 किलोग्राम, सागर जगलान 74 किलोग्राम, दीपक पूनिया 97 किलोग्राम, रजत रूहल 125 किलोग्राम भार वर्ग में शामिल हैं। वहीं महिला फ्री स्टाइल में दीपांशी 50 किलोग्राम, अंतिम पंगाल 53 किलोग्राम, मनीषा भानवाला 57 किलोग्राम, मानसी अहलावत 62 किलोग्राम, निशा दहिया 68 किलोग्राम, प्रिया मलिक 76 किलोग्राम भार वर्ग में शिरकत करेंगी। ग्रीको रोमन शैली में सुमित दलाल 60 किलोग्राम, अमन बरोनिया 77 किलोग्राम, सुनील कुमार 87 किलोग्राम और नितेश सिवाच 97 किलोग्राम भार वर्ग में देश की चुनौती रखेंगे। लेकिन इतने पहलवानों की मौजूदगी में महिला दल की ज्यादा तगड़ी दावेदारी मानी जा रही है, इससे आप कितने सहमत हैं और वजह क्या है?
2: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारी वुमेन्स टीम कंसिस्टेंटली इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करते आ रही है और एक नया ब्रीड भी ऊपर आ रहा है। जैसे दीपांशी फोगाट 50 kg में है, 17 साल की है, उन्होंने ट्रायल्स में सबको सीजन्ड प्लेयर्स को हरा के एशियन गेम्स में अपनी दावेदारी पेश की है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि हमारा नेक्स्ट लेवल, क्योंकि हमें एले ओलंपिक्स भी देखना है, तो किस तरह से यंग ब्रीड हमारी परफॉर्मेंस कर रही है। तो अंतिम पंगाल तो है ही, निशा दहिया है, सीजन्ड प्लेयर है, उनसे उम्मीद रहेगी। पर हमें ये भी देखना है कि ये जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं, चाहे वो दीपांशी हो, मानसी अलावत हो, एज ग्रुप टूर्नामेंट्स में इंटरनेशनल लेवल पे ये जीत के आ रहे हैं, तो एशियन गेम्स में इनको एक पास एक बहुत बड़ा मौका है कि अपने आप को जो है किस लेवल पे ये देखती है और आगे कैसे इस परफॉर्मेंस को लेके जाती है। मेंस खिलाड़ियों में मैं अमन शेरावत की बात स्पेशली करना चाहता हूं, क्योंकि उनका जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है पेरिस ओलंपिक्स में, जब रेसलिंग एक बुरे दौर से गुजर रहा था, कैंप नहीं हो रही थी, फिर भी वो मेडल लेके आए हमारे लिए और उसके बाद से वो कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। तो अमन शेरावत के पास एक्सपीरियंस है, 57 kg लोअर वेट कैटेगरीज में हमेशा फ्री स्टाइल में हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। और सुजीत कलकल 65 kg एक ऐसे कैटेगरी में है जो कि बजरंग पुनिया का कैटेगरी कहा जाता है, और बजरंग पुनिया के बाद अगर ऐसा कोई रेसलर आया है जो इतना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, वो सुजीत कलकल है, तो उनके लिए बहुत बड़ा मौका मैं मानता हूँ एशियन गेम्स में कि किस तरह से वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं।
1: एशियन गेम्स में कुश्ती में कंपटीशन का लेवल काफी तगड़ा होता है, और सारिका आमतौर पर किन देशों की कठिन चुनौती होगी और उनके खिलाफ हमारी क्या रणनीति होगी?
0: बिल्कुल, एशिया को जो है वो कुश्ती का हब माना जाता है। एशिया में सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपको कुश्ती में देखने को मिलता है। एशियन नेशंस हैं जैसे जापान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना और इंडिया। ये बहुत ही तगड़े माने जाते हैं कुश्ती में, बहुत स्ट्रांग नेशंस हैं। इनकी जो टीम होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। आप मंगोलिया को भी ले सकते हैं, ये सारे देश काफ़ी अच्छी टक्कर देते हैं। बहुत अच्छा कंपटीशन रहेगा जिसमें आप देख सकते हैं 50 किलो में यूई सुसाकी आपको कॉम्पीट करती नजर आएंगी, जो कि कई बार की वर्ल्ड चैंपियन हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो ऐसे ही हर एक वेट में 57 kg में आपको देखने को मिलेगा कंपटीशन काफ़ी अच्छा। 68 में भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंडर्स हैं, और 62 में भी मंगोलिया है, जापान है, 76 में किर्गिस्तान है। तो बहुत ही अच्छा कंपटीशन रहेगा, और जो मेडल की दावेदारी है वो इंडियन प्लेयर्स की ऐसे ही रहेगी, क्योंकि इंडिया की टीम मैं मानती हूँ कि अभी इन सब से ऊपर बढ़ के आ रही है। जापान को अगर कोई सबसे ज्यादा टक्कर दे सकता है तो वो अभी इंडिया की टीम है।
1: जी, और अभिषेक, कुश्ती से अब शूटिंग की तरफ चलें तो निशाने लगाने के इस खेल में हमारी सबसे तगड़ी दावेदारी है। प्रतियोगिता की बात करें तो मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में पार्थ राकेश माने, हिमांशु ढिल्लो, रुद्रांश पाटिल, विमेन्स 10 मीटर एयर राइफल में इलावेनिल वलारिवान, सोनम उत्तम मस्कर, विदर्शा विनोद, मेंस 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, नीरज कुमार, रुद्रांश पाटिल, विमेन्स 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में आशी चौक से विदर्शा के विनोद, तिलोत्तमा सेन, मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में केदारलिंग बी उचा गनवे, गौरव कमलजीत, विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में सुरुचि सिंह, ईशा सिंह, मनु भाकर, मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में अनीश भानवाला, विमेंस 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में ईशा सिंह, मनु भाकर, राही सरनोबत, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में केदारलिंग बी उचा गनवे, सुरुचि सिंह, मेन्स ट्रैप में किनान चेनाई, अवर रिजवी, शपथ भारद्वाज, विमेन्स ट्रैप में नीरू मनीषा कीर, आशिमा अहलावत, मेन्स स्कीट में अनंतजीत सिंह नरूका, भवतेग सिंह गिल, मैराज अहमद खान, और विमेन्स स्कीट में पारिनाज धालीवाल, राजा ढिल्लो, महेश्वरी चौहान जैसे 30 शूटर्स विभिन्न वर्गों में शामिल हैं। युवा और अनुभवी खिलाड़ियों से भरे इस दल में किन खास पर नजर

0: रखनी चाहिए?
1: बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया आपने धर्मेंद्र जी। पहले तो यह बता दो कि शूटिंग एज ए स्पोर्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है मल्टी डिसिप्लिनरी इवेंट्स कॉम्पिटिशन्स में, चाहे वो एशियन गेम्स हो, ओलंपिक्स हो। सबसे पहले हम लोग शूटर्स को हमारे देखते हैं कि ये कितने मेडल्स जीतेंगे। तो लास्ट टाइम भी जो हमारा 100 का छलांग हम लोगों ने मेडल टैली में पार किया था, उसमें शूटिंग का बहुत बड़ा एक योगदान था। 22 मेडल्स हम लोग लेके आए थे, उसमें से 7 गोल्ड मेडल है, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। उन 7 गोल्ड मेडल्स में आप देखिए तो एथलेटिक्स जो था हमारा सबसे टॉप में था, 28 मेडल्स आए थे, उसके बाद शूटिंग का नंबर है। तो इस बार भी हमें 100 से पार करना है तो शूटिंग टीम को अच्छा करना होगा। और इस बार मुझे ज़्यादा होप्स इसलिए भी है क्योंकि उसके दो कारण हैं। एक कारण ये है कि इस साइकिल में अगर आप देखेंगे तो पिछले एशियन गेम्स के बाद जो पेरिस ओलंपिक्स हुआ उसमें हमने शूटिंग में काफ़ी अच्छा किया। मनु भाकर 2 मेडल ले के आई और स्वप्निल कुसाले 50 मीटर राइफल 3 में मेडल जीता, 3 मेडल्स हमारे आए शूटिंग में। उसके बाद जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ लास्ट ईयर, उसमें हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। हमने इंडिविजुअल कैटेगरीज में मेडल्स जीते, ऐश्वर्या प्रताप तोमर, ईशा, एलाविनिल। तो ये सारे जाएंगे इस एशियन गेम्स में कैरिंग लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हम लोगों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल के जैसे प्लेटफॉर्म में इंडिविजुअल में मेडल जीता है। ये उम्मीद है हमें कि पिछले बार जितना 22 मेडल्स था उससे हम लोग ज्यादा जीतेंगे इस बार।
0: अगर हांगजो एशियन गेम्स 2023 में हमारे शूटर्स ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पदक जीते नहीं थे, बल्कि कह सकते हैं कि बटोरे थे, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज समेत कुल 22 पदक, जैसी आपने बात की, भारत की झोली में आए थे। अभिषेक, इस बार पदकों की संख्या से आगे निकलना हमारे निशानाबाजों के लिए खुद कितनी बड़ी चुनौती होगी?
1: चुनौती तो है क्योंकि शूटिंग एशियन लेवल पे एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें बहुत स्ट्रांग कंटेंडर्स है। पिस्टल में साउथ कोरिया बहुत स्ट्रांग है, चाइनीज शूटर्स है, तो बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है। बट हमारे शूटर्स कुछ कम नहीं है, हम लोगों ने प्रूव किया है। देखना यह है कि इंडिविजुअल कैटेगरी में हम लोग कितने मेडल्स इस बार जीतते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जितने मेडल्स जीते थे वो ज्यादा मेडल्स टीम कैटेगरी में आए थे, तो टीम कैटेगरी ओलंपिक्स में नहीं है। इस बार हमारे शूटर्स का ये टारगेट है कि इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन्स में हम लोग ज्यादा मेडल लाए ताकि उस तरह से हमारा आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप का ओलंपिक से क्वालिफिकेशन हो और फिर एले ओलंपिक्स का तक का टारगेट कर सके। तो यहां से हमारी जो है शुरू होती है एले ओलंपिक्स की प्रिपरेशन शूटर्स की। और बहुत सारे शूटर्स हैं जिनको पहला बार ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है खेलने के लिए। एक्चुअली मिक्स्ड है, नए प्लेयर्स काफी आए हैं और पुराने प्लेयर्स भी है, तो उम्मीद है काफी अच्छा प्रदर्शन रहेगा।
0: और सारिका, आप खुद युवा और देश की उभरती हुई पहलवान है और चोट की समस्या का सामना किया है। आपसे ये जानना चाहूंगा कि स्ट्रेंथ स्टेमिना के इस गेम कुश्ती में पहलवानों के लिए फिटनेस बनाए रखना कितना जरूरी होता है?
2: कुश्ती में फिटनेस बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, ना सिर्फ कुश्ती में बल्कि हर एक स्पोर्ट्स में। मोस्टली अगर हम बात करें तो कॉम्बैट स्पोर्ट्स की, जैसे बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, टाई कमांडो हो गया, जूडो हो गया, तो इनमें फिटनेस लेवल का बहुत आपको फर्क देखने को मिलेगा। फिटनेस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपको, इसमें पावर भी चाहिए, एंड्योरेंस भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए, स्टेमिना भी चाहिए। आपको बाउट लड़नी है कंटिन्यू कंटिन्यू, आपकी पूरी बॉडी की पावर लग रही है, आपको सांस भी चढ़ेंगे, आपका दम भी फटेगा, उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और एक बहुत ही अच्छा फिटनेस लेवल आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। अभी अगर हम रेसलर्स की बात करें तो रेसलिंग में हमारे जो कोचेस हैं और साथ में हमारे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के कोच भी हम फेडरेशन ने दिया हुआ है, तो उनके साथ हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका प्रॉपर हमारे पर ध्यान है कि हमारी फिटनेस लेवल है वो बनी रहे, डाइटिशियन हमारे साथ हैं, हमारी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिटनेस बनाए रखना, अगर आपके फिटनेस अच्छी है तो आपको इंजरीज के चांसेस भी कम होंगे।
0: अभिषेक, भारत की तीरंदाजी टीम की बात करें तो पुरुष रिकर्व टीम में धीरज बोम्बदेवरा, नीरज चौहान, यशदीप भोगे, महिला रिकर्व टीम में कीर्ति शर्मा, कुमकुम मोहोद, अंकिता भगत शामिल हैं। वहीं पुरुष कंपाउंड टीम में साहिल जाधव, कुशल दलाल, गणेश मणि रत्नम तिरुमुरु और महिला कंपाउंड टीम में ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपर्थी, प्रतिका प्रदीप का नाम शामिल है। कुछ दिन पहले धीरज बोम्बदेवरा ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वो इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाज बने। धीरज की इस कामयाबी से भारतीय कैंप का जोश कितना हाई होगा?
1: बहुत ज्यादा हाई होगा, क्योंकि जब एक आपका खिलाड़ी वर्ल्ड कप फाइनल जैसे प्लेटफॉर्म से जीत के आता है जिसमें सिर्फ टॉप 8 शूटर्स आर्चर्स खेलते हैं और वो आपके साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, तो एक मोटिवेशन आ जाता है कि एक हमारा आर्चर जाके इतने बड़े लेवल पे जीता है। और वहाँ से डायरेक्टली धीरज मेक्सिको से जापान पहुँच चुका है और ट्रेनिंग कर रहा है, और एक्सपीरियंस काफी है, पेरिस ओलंपिक्स में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था धीरज का, तो धीरज से उम्मीद है

0: कि वो टीम को आगे लेके चलेगा, क्योंकि इस बार का जो टीम है आर्चरी का वो काफी नया टीम है। तीन प्लेयर ही जो है लास्ट एशियन गेम्स से इस बार खेल रहे हैं, उसमें से धीरज है, ज्योति सुरेखा है कंपाउंड वुमेन में, अंकिता भगत है, बाकी सारे नए आर्चर्स हैं। और लास्ट टाइम का जो आर्चरी का हमारा परफॉर्मेंस था वो काफी अच्छा था, 9 मेडल्स हमारे आए थे, हम लोगों ने कंपाउंड में स्वीप कर गए थे हम लोग। इस बार इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आर्चरी में LA क्वालिफिकेशन भी इस यहाँ से होगा, तो वो हमारी कोशिश रहेगी कि हम यहाँ से बर्थ निकाल सके ओलंपिक्स का भी।
1: जी, और निशाने साधने के पारंपरिक खेल तीरंदाजी में पिछले एशियन गेम्स में भारत के धनुर्धरों ने 5 स्वर्ण समेत 9 पदक जीते थे। टीम कॉम्बिनेशन को देखते हुए क्या लगता है इस बार हम उससे आगे निकलेंगे?
0: हमें आगे निकलना चाहिए क्योंकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी है और कुछ नए भी है। ज्योति सुरेखा की अगर बात करें तो बहुत उनका एक्सपीरियंस है, उनके साथ हम लोगों ने, ज्योति और ओजस ने लास्ट टाइम मिक्स्ड फॉर्मेट में कंपाउंड में गोल्ड मेडल जीता था, वो साउथ कोरिया की टीम को हराया था। इस बार उनके साथ साहिल जाधव है जो कि नए प्लेयर है, लेकिन वो काफ़ी टैलेंटेड है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में उनका गोल्ड मेडल है, और यही वो फॉर्मेट है जहाँ पे हमारा LA ओलंपिक से क्वालिफिकेशन है। तो उम्मीद है अगर उस तरह का हम लोग परफॉर्मेंस करें तो हमें LA ओलंपिक से कोटा भी मिल जाए। तो काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है जो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं आर्चरी के, क्योंकि दो तीन है, कि वो पूरा टीम को साथ में आगे लेके चले।
1: और सारिका, खेलों के विकास के लिए नए भारत में जिस तरह से खेल मंत्रालय, साई और तमाम खेल संघ काम कर रहे हैं, उससे खिलाड़ियों के लिए कितना माहौल बेहतर हुआ है?
2: खिलाड़ियों के लिए माहौल काफ़ी बेहतर हुआ है, काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं एंड स्कीम्स वगैरह बहुत अच्छी अच्छी निकाली गई हैं। जैसे अगर हम खेलो इंडिया स्कीम की बात करें तो उससे बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है, टॉप स्कीम है उससे बेनिफिट मिल रहा है। ना सिर्फ गवर्नमेंट बट प्राइवेट स्पॉन्सर्स भी आ रहे हैं, तो काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स आ रहे हैं बच्चों को, जो है स्पोर्ट्स पर्सन्स को जो है वो बहुत फ़ायदा मिल रहा है एंड जो कैंप वगैरह लग रहे हैं हमारे, तो उससे बहुत बेनिफिट हो रहा है। हर तरह से रिकवरी, ट्रेनिंग, डाइट, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छे से हमें काम आ रही हैं।
1: और अभिषेक, बॉक्सिंग का जब भी नाम आता है तो पदकों की हमारी आस बढ़ जाती है। इस बार बॉक्सिंग दल में पुरुष वर्ग में जादूमणि सिंह 55 किलोग्राम, सचिन सिवाच 60 किलोग्राम, सुमित कुंडू 70 किलोग्राम, अंकुश 80 किलोग्राम, कपिल पोखरिया 90 किलोग्राम, नरेंद्र बेरवाल 90 से अधिक किलोग्राम भार वर्ग में भारत की चुनौती पेश करेंगे। महिला वर्ग में साक्षी चौधरी 51 किलोग्राम, प्रीति पवार 54 किलोग्राम, प्रिया घंगास 60 किलोग्राम, परवीन हुडा 65 किलोग्राम और लवलीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम वर्ग में देश की झंडा बरदार होंगी। इन नामों को सुनकर बेहद दमदार दावा नजर आ रहा है, आप क्या मानते हैं?
0: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि इन बॉक्सिंग टीम की हमारी परफॉर्मेंस कॉमनवेल्थ गेम्स में काफ़ी अच्छी रही है, खास करके महिला टीम की जो 5 गोल्ड मेडल वहाँ पे जीता। लेकिन एशियन गेम्स बिल्कुल ही डिफरेंट चैलेंज होगा, एशियन गेम्स में कंपटीशन और भी ज़्यादा होने वाला है। पर हमारे एक एक्सपीरियंस प्लेयर्स है जैसे लवलीना बोरगोहेन, ओलंपिक मेडलिस्ट है, 75 किलो कैटेगरी में खेल रही है, लास्ट टाइम उन्होंने इसी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था, तो उनसे उम्मीद काफ़ी होगी। प्रीति पवार का मैं नाम लेना चाहूँगा, 54 kg में वो काफ़ी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है, एशियन चैम्पियनशिप में अभी वो गोल्ड मेडल जीती है इस साल, तो ये सारा परफॉर्मेंसेस वहाँ पे जाके एशियन गेम्स में एक और बड़े मंच में देना, ये हमारी तैयारी दिखाएगी कि हम लोग कितना परफॉर्म कर सकते हैं वहाँ पे। वैसे ही प्रिया घनघास है, ये नए टैलेंट है, लेकिन इन्होंने भी एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, तो हमारी महिला टीम काफ़ी अच्छा करते हुए एशियन गेम्स तक अभी तक कर रही है, उम्मीद है इनसे काफ़ी अच्छा उम्मीद रहेगा। मेंस टीम नई टीम है, थोड़ी इनएक्सपीरियंस्ड है, पर जादूमणि सिंह है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सचिन सिवाच एक्सपीरियंस्ड है उनके पास अगेन, और नरेंद्र बेरवाल लास्ट टाइम इन्होंने मेडल जीता था। उम्मीद हमारी रहेगी कि हालांकि कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है बॉक्सिंग में, कि वो लास्ट टाइम का जो हमारा आंकड़ा था 4 मेडल का उससे आगे जा सके।
1: हांगझो में मुक्केबाजी में हमने लवलीना बोरगोहेन के 1 रजत समेत 5 पदक जीते थे। इनमें से 4 मेडल महिला मुक्केबाजों के नाम थे। अभिषेक, वैसे तो दोनों वर्गों में पंच के एक से एक उस्ताद नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या मेरी तरह आपको भी लग रहा है कि महिला वर्ग में पदकों की हमारी ज्यादा तगड़ी और दमदार चुनौती है?
0: बिल्कुल, इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो, वर्ल्ड कप्स जितने हो, उसमें हमारी जो वुमेन बॉक्सर्स हैं उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा आ रहा है, और बहुत कंसिस्टेंटली से ये परफॉर्मेंस आ रहा है। सारे टॉप बॉक्सर्स को आप अगर देखें, चाहे वो चाइना की हो, कजाकिस्तान हो, उज़बेकिस्तान हो, इनको हरा रहे हैं हम लोग। प्रीति पवार ने भी इनको हराया है एशियन चैम्पियनशिप का, जब गोल्ड मेडल जीता।

0: पड़ सकता है।
1: इसका काफी असर पड़ेगा रेसलिंग पे, खासकर कि प्लेयर्स पे। जैसे एक बहुत अच्छी टीम हमारी तैयार हो गई थी, और जो भी प्लेयर्स हमारे डोपिंग में फंसे हैं उनसे पूरी दावेदारी थी मेडल की। आप मुकुल दहिया को लगा सकते हैं, एशियन चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट हैं, और उनको एक बहुत स्ट्रांग कंटेंडर हम मान सकते थे 86 kg में। पूरे भारत को उनसे उम्मीदें थी। दीपांशु 130 kg भार वर्ग में जो कि खेलने वाले थे ग्रीको रोमन में, उन पे भी डोपिंग का बैन है, और दीपक ग्रीको रोमन के ही पहलवान हैं, उन पे भी बैन लगा है। तो एक बहुत बड़ा झटका भारतीय कुश्ती के लिए ये है। तो अभी उनका नाम तो रिप्लेस नहीं हो सकता क्योंकि टाइमलाइन जो होती है एशियन गेम्स में जाने की, एंट्रीज भेजने की, वो बंद हो चुकी है। लेकिन जो हमारी टीम अभी बाकी बची है, हमें उनसे पूरी उम्मीदें हैं कि वो इन सारे मेडल्स को कवर करें।
0: जी, और अभिषेक, अब बात स्क्वाश की टीम की बात करें तो एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में सूरज कुमार चंद पुरुष टीम और मिक्स डबल्स, वीर चोटरानी मेंस सिंगल्स और मेंस टीम, वेलावन सेंथिल कुमार मिक्स डबल्स मेंस टीम, अभय सिंह मेंस सिंगल्स और मेंस टीम में शामिल है। महिला वर्ग में युवा अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा के अनुभव के साथ साथ तन्वी खन्ना और शमीना रियाज की भी चुनौती होगी। इस गेम में हमारे खिलाड़ियों ने एशिया में अपनी दमदार चुनौती पेश की है, तो अनुभव और युवा जोश वाली ये टीम कितना कमाल कर सकती है?
2: बहुत कमाल कर सकती है, और मैं इसलिए भी ये बोल रहा हूँ क्योंकि अगर अनाहत को देखें तो उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस साल। वर्ल्ड जूनियर टाइटल जीती है अनाहत, और उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। और लाइक आर्चरी, स्क्वाश भी एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें एले ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन स्पॉट भी होगा, तो वो उसके लिए भी हम लोग फाइट करेंगे। हमारी मेंस टीम लास्ट टाइम गोल्ड जीती थी और वही टीम इस बार भी उतरी है, तो वो एक्सपीरियंस भी है, तो उनसे भी हमें काफ़ी उम्मीद रहेगी कि वो फिर से गोल्ड लेके आए। तो ओवरऑल स्क्वाश में मुझे लगता है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। जोशना चिनप्पा जो कि बहुत ही एक सीजन प्लेयर है और इस लेवल पे काफ़ी मेडल्स हमें दे चुकी है, वो भी मिक्स टीम में है, तो उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा स्क्वाश से भी।
0: 2023 की बात करें तो भारत ने स्क्वाश में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते थे। उस टीम के कई खिलाड़ी इस बार शामिल नहीं हैं। दूसरी तरफ अनाहत सिंह जैसी युवा प्रतिभा की अगुवाई में क्या भारत अपने मेडल्स के पिछले आंकड़े को पार करता दिखाई दे रहा है?
2: कंपटीशन काफ़ी टफ है स्क्वाश में, मलेशिया होगा, बाकी टीमें और भी होंगी, तो ये देखना पड़ेगा कितना हम लोग चैलेंज कर सकते हैं टॉप कॉम्पिटिटर्स को। बट इस लेवल पे जब आप खेलते हैं तो आपके अंदर एक मोटिवेशन अलग होता है कि आप टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एशियन गेम्स में, तो आपको परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा हो जाता है। तो ये देखते हुए मुझे लगता है काफ़ी अच्छा टीम परफॉर्म करेगी, और अनाहत के ऊपर तो काफ़ी फोकस रहेगा कि वो कैसा करती है। अगर वो एक सिंगल्स यहाँ से बर्थ निकाल सकती है एले ओलंपिक्स के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए।
0: सारिका, दबाव की परिस्थितियों में एक पहलवान के लिए अपने जज्बातों पर काबू बनाए रखना कितना जरूरी होता है, और जब आप मुकाबले में पिछड़ रही हो तब स्टैंड में लहराता एक तिरंगा और समर्थकों का एक जोश, जो आवाज उठती है स्टैंड से, वो आपके अंदर कितनी स्फूर्ति भरती है?
1: खिलाड़ियों के लिए दबाव की स्थिति में अपने माइंड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो दबाव में आके पिछड़ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं कि मैं तो हार रहा हूँ। लेकिन तब आपको पीछे से शोर सुनाई देता है, चीयर सुनाई देता है, इंडिया इंडिया, तो वो आपके अंदर एक जोश लाता है कि नहीं, मुझे करना है, ना सिर्फ अपने लिए, अपने देश के लिए करना है। और तब आप वो इंडिया का कॉस्ट्यूम पहनकर मैट पे जाते हो या अपने रिंग में जाते हो। हर स्पोर्ट्स के इस पर्सन की फीलिंग सेम होती है, तो वो अपने लिए नहीं कॉम्पीट करता, वो अपने देश के लिए कॉम्पीट करता है। उसको ये होता है कि मेडल मेरा नहीं है, मेरा देश का है, और मुझे अपने देश के लिए मेडल लाना है।
0: बिल्कुल,
1: तो प्लेयर्स में सबसे ज़्यादा मैं ये मानती हूँ कि जो अपने माइंड को कंट्रोल करता है, जो अपना माइंड सेट स्ट्रांग रखता है, वो हर एक सिचुएशन को टैकल कर सकता है, हर एक सिचुएशन में जीत सकता है। और रेसलिंग स्पोर्ट्स की मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो हमारे में ऐसा होता है कि लास्ट के 10 सेकंड में भी आप अगर स्कोर ले रहे हो तो आप जीत सकते हो। आपके पास ऑप्शन बचा होता है कि आप अटैक करके स्कोर ले सकते हो, और तब आपको पीछे से चीयर सुनाई देता है तो बहुत आपका मनोबल बढ़ाता है, बहुत आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि मेरे साथ इतने लोग खड़े हैं, मैं अकेला नहीं हूँ।
0: जी, और आपने एशियन गेम्स में भारतीय कुश्ती दल की तो तमाम बातें कर ली, अब आपने भी देश के लिए कई प्रतिस्पर्धाओं में मेडल जीतकर तिरंगे का मान बढ़ाया है, आपने आगे अपने करियर के लिए क्या लक्ष्य तय कर रखा है?
1: हर खिलाड़ी की तरह मेरा भी यही सपना है कि ओलंपिक्स में जाना है, देश को रिप्रेजेंट करना है और देश

0: के लिए मेडल लेकर आना है. तो मेन फोकस तो एले ओलंपिक्स का ही रहेगा. मैं भी यही चाहूँगी कि मैं एले ओलंपिक्स में जाऊँ और अपने देश का मान सम्मान बढ़ाऊँ, गौरव बढ़ाऊँ और वहाँ से मेडल लेकर आऊँ.
1: और अभिषेक, चलते चलते एक सवाल कि क्या भारतीय दल आपको पदकों के मामले में पिछली बार से आगे निकलता दिखाई दे रहा है?
2: बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हमारी प्रिपरेशन हुई है, आई थिंक काफ़ी सब कुछ हम लोगों ने कवर किया है। हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया कि जिस तरह वहाँ पे हमें एकोमोडेशन मिलेगा क्रूज शिप में, कंटेनर्स में, हम लोगों ने हमारे साई सेंटर्स में, पटियाला में, बेंगलोर में एथलीट्स को उसी तरह का एकोमोडेशन दिया ताकि वो एक्रोमेटाइज कर जाए। बाहर हम लोग एथलीट्स को काफ़ी भेजा गया है इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए, जैसे कि सारिका ने बताया, फॉरेन कोचेस काफ़ी आए हैं, तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन हुआ है। तो ऐसा जब प्रिपरेशन होता है तो एथलीट के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये प्रिपरेशन, तैयारी हम लोग करके जा रहे हैं तो कुछ हम लोगों ने छोड़ा नहीं है, अब सिर्फ वहां पे स्टेज में जाके हमें परफॉर्म करना है, मेडल जीतना है।
1: साथियों, एशियन गेम्स का मंच तैयार है। हमारे खिलाड़ी भी हर चुनौती को तोड़कर पोडियम तक पहुंचने की जोरदार तैयारी में हैं। उम्मीद है कि आईची नागोया में होंगजोंग में जीते पदकों का न सिर्फ आंकड़ा बढ़ेगा बल्कि मेडल का रंग भी और सुनहरा होगा। सारिका मलिक, आपको उज्जवल भविष्य की दुआ के साथ साथ स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद।
0: थैंक यू सर।
1: और अभिषेक रॉय, आकाशवाणी को समय देने के लिए आपका भी धन्यवाद।
2: थैंक यू।
1: फिलहाल चीयर फॉर भारत कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ धर्मेंद्र मणि राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: ഇപ്പോൾ സമയം 8 മണി കഴിഞ്ഞ് 44 മിനിറ്റും 55 സെക്കൻഡും. ഇനി 8:45 സമാചർ സന്ധ്യ, തുടർന്ന് ന്യൂസ് അറ്റ് 9 ഡൽഹി റിലേ.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया. सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह करने को मंजूरी दी. इसका 51 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया. भारत ने सऊदी अरब के मक्का के पास हुए ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली का आग्रह किया. छत्तीसगढ़ की एक विशेष एनआईए अदालत ने बस्तर जिले में 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई और दिग्गज कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है. श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है. नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे के मामले में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया.

0: उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और एआई तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन में सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मंजूरी से भविष्य निधि बचत तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा।
2: वेतन की सीमा बढ़ाने का फैसला देश में सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल अगर कोई नया कर्मचारी हर महीने 15,000 रुपए से अधिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है तो वह अपने आप कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ के दायरे में नहीं आता था। वहीं अब वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए करने से अब बड़ी संख्या में कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था से जुड़ सकेंगे। इससे अस्थायी और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को भविष्य निधि में बचत, कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन और बीमा सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने 3 लाख रुपए तक की छोटी निर्यात खेपों के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र आरसीएमसी या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए और छोटे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम करना तथा डाक, कुरियर और अन्य उभरते माध्यमों से निर्यात को सुगम बनाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार ये कार्रवाई की गई है। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की उम्मीद करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि

0: होगी। इससे पहले आज न्यूजीलैंड की संसद में भारत के साथ समझौते को लागू करने के लिए आवश्यक विधेयक पारित किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान भाजपा द्वारा देश भर में 12 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री मोदी 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपना 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। कोलकाता में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि श्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर यह अभियान समाज से हर वर्ग से जुड़ने का अवसर है।
1: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
0: जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने आज स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत।
2: स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने।
0: श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं।
3: आज देश के 5.25 लाख से अधिक गांव ODF प्लस मॉडल घोषित हो चुके हैं। साथ ही वर्ष 2014 से अब तक 12.22 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण हो चुका है। यह स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव को दर्शाता है। स्वच्छता इस सेवा 2025 में 18 करोड़ से अधिक नागरिकों ने भाग लिया, जिनमें से लगभग 14 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में से हैं। यह दिखाता है कि देश में स्वच्छता के प्रति जन भागीदारी लगातार मजबूत हो रही है।
0: इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना 2047 तक विकसित भारत की महत्वाकांक्षा के लिए एक आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक अनिवार्यता है।
4: दुनिया भर में लोग तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रहे हैं। अनुमान है कि साल 2040 तक बिकने वाली हर 10 नई कारों में से 4 कारें इलेक्ट्रिक होंगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में हमारे देश के लोगों की नौकरियां बची रहें और ऑटोमोबाइल सेक्टर तरक्की करता रहे, तो हमारे ऑटोमोबाइल उद्योग को भी इन वैश्विक रुझानों के साथ बदलना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की जगदलपुर स्थित विशेष अदालत ने झीरम घाटी कांड के सभी 10 दोषियों को आज फांसी की सजा सुनाई। वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में झीरम घाटी में माओवादियों के हमले में कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं सहित 27 लोगों की मौत हो गई थी और 35 अन्य घायल हुए थे। NIA ने इस मामले में 11 माओवादियों को गिरफ्तार किया था। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि ये पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
7: प्रेम प्रसंग हो या कॉमेडी या फिर सीरियस पात्र, अभिनेता अनंत नाग का सरल अभिनय पर प्रेक्षकों

0: with Prime Minister Modi's personality. The Prime Minister's birthday tomorrow will be observed as Seva Divas, and blood donation camps will be organized across the country. Veteran actor of Kannada cinema Anant Nag will be conferred the prestigious Dada Saheb Phalke Award for 2024 for his outstanding contribution to the Indian cinema. The Information and Broadcasting Ministry made the announcement today. The award will be presented at the 72nd National Film Award ceremony on 22nd of this month at Kevadia in Gujarat. The Delhi government has approved the construction of a 250-bed super-speciality cum trauma block at Guru Tegh Bahadur Hospital in Dilshad Garden of Delhi. This decision was taken at a cabinet meeting chaired by Chief Minister Rekha Gupta in New Delhi. The Chief Minister said that the project will cost over 244 crore rupees and the block will be constructed under Phase 4 of the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana. It will have 250 beds, 48 specialist OPD rooms and 9 modern operation theatres. In men's cricket, India will play the final match of the 3-match T20 International Series against Afghanistan at the Arun Jaitley Stadium in Delhi tomorrow. The match will begin at 7:30 p.m. Indian Standard Time. India have already secured the series with convincing wins in the first 2 matches. And that is the end of this news bulletin.
1: ആകാശവാണി കാലാവസ്ഥ അറിയിപ്പ്. തിരുവനന്തപുരത്തും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ആകാശം ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായിരിക്കും. ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ മഴയുണ്ടാകാൻ സാധ്യത. കാലാവസ്ഥ അറിയിപ്പ് കഴിഞ്ഞു. ആകാശവാണി ഈ നിലയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇന്നത്തെ പ്രക്ഷേപണം സമാപിക്കുന്നു. നാളെ രാവിലെ 5:48 വരെ FM ഗോൾഡ് കേൾക്കാം. ഡൽഹിയിലെ എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും ശുഭരാത്രി. ജയ് ഹിന്ദ്.
2: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
3: नमस्कार. मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन. श्रोताओं, स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ विराजमान हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ सिद्धार्थ सिंह. सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
4: नमस्कार प्राची. गुड इवनिंग अर्जुन.
2: गुड इवनिंग.
3: से पहले आइए सुने सुर्खियां.
2: Benchmark domestic stock market indices rise, Sensex gains over 300 points, Nifty settles at 23,218. New Zealand passes legislation to implement free trade agreement with India, and global crude oil prices decline.
3: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में बढ़त. सेंसेक्स 300 अंकों से अधिक बढ़ा. निफ्टी 23,218 पर स्थिर हुआ. न्यूजीलैंड ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने के लिए कानून पारित किया और दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें घटी.
2: एंड बिफोर वी टेक आवर मेन स्टोरीज इन डिटेल, हियर इज एन इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
3: आइए श्रोताओं, बिना विलंब किए जानते हैं कि दिन के अंतराल में हमारे शेयर बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया. प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग आधे प्रतिशत की बढ़त देखी गई. सेंसेक्स 333 अंक बढ़कर 74,336 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 99 अंक की बढ़त के साथ 23,218 पर स्थिर हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स बिना किसी बड़े बदलाव के बंद हुआ, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 0.2% की गिरावट आई. इससे पहले अमरीकी बॉन्ड यील्ड और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद बाजार सकारात्मक रुख के साथ खुले और पूरे सत्र के दौरान सीमित दायरे में कारोबार करते रहे.
2: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड ओवर 0.4% हायर टुडे. सेंसेक्स गेन 333 पॉइंट्स टू क्लोज एट 74,336. निफ्टी एडेड 99 पॉइंट्स टू सेटल एट 23,218. In the broader market on the NSE, the Nifty Mid-Cap 100 Index ended on a flat note, while the Nifty Small-Cap 100 Index dropped 0.2%. Earlier, the markets opened on a positive note despite elevated US bond yields and crude oil prices and traded within a range throughout the session.
3: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 18 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई. सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में आईटीसी 2.5%, एसबीआई 2% से अधिक और एक्सिस बैंक के शेयरों में लगभग 2% की बढ़त हुई. वहीं खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में टीसीएस 2.5% से अधिक, इंफोसिस लगभग 1.5% और टेक महिंद्रा के शेयरों में 1.3% की गिरावट आई.
2: In the sectoral indices on the BSE, 18 out of the 28 sectors edged upward among the top gainers. Insurance advanced 2%, FMCG rose over 1.4% and PSU banks added 1.1%. In contrast, Focus IT shed 1.5%, IT lost 1.4% and telecommunications dropped almost 0.8%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,351 companies declined, 1,979 companies advanced, and 231 companies remain unchanged.
3: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर की तुलना में आज अपरिवर्तित रूप से 95.96 रुपए पर बंद हुआ. सिद्धार्थ, हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें जो हैं उसमें गिरावट आई है और एक तरफ हम देख रहे हैं वहीं पर अपने स्टॉक मार्केट में हमने देखा कि शुरुआती बढ़त जो है उसे उसी तरीके से रेंज बाउंड में रखा है. तो ये क्या दर्शाता है, क्या इंगित करता है?
4: नहीं प्राची, जो आपने बात कही कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है, मैं उसको कहूंगा कि मामूली गिरावट आई है. अभी भी हमारे लिए वो जो है अनकंफर्टेबल रेंज के बाहर है, मतलब जो कंफर्टेबल रेंज है उसके बाहर है. मतलब 100 बिलियन डॉलर अभी भी क्रूड प्राइसेस मुझे लगता है 107 बिलियन डॉलर के आसपास है और जो इंडियन बास्केट है वो तो तकरीबन,
3: लेकिन जो ही गिरावट आई है मे बी उसका पॉजिटिव सेंटिमेंट वहां झलक रहा हो.
4: हाँ बिल्कुल, हाँ हो सकता है कि आज एक इमीडिएट जो आज आपने देखा बाजार जो पॉजिटिव जोन में थी वो एक कारण हो सकता है. लेकिन जो आपने बात बोली कि रेंज बाउंड है, कहीं ना कहीं एक ब्रॉड रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है और जो दुनिया में अनिश्चितता है, चाहे वो क्रूड ऑयल को लेके हो, चाहे मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रही है और दिनों दिन वो स्थिति कोई सुधार नहीं दिख रहा है. अनिश्चितता जो है एकदम निश्चित हो गई है जिसको कहा जाए, तो मुझे लगता है वो बड़े कारण है. ये और ये सब तब है जब कि जो भारत के अपने आर्थिक जो इकोनॉमिक आप पैरामीटर्स कह लें या जो हमारे फंडामेंटल्स हैं वो एकदम बढ़िया हैं. मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं. हमारा जीडीपी जो Q1 का आया बहुत ही उत्साहवर्धक था, नंबर 7.8 जो कि एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा आया. और उसके अलावा अगर अभी भी आप इन्फ्लेशन देखेंगे, ठीक है थोड़ा ऊपर आ रहा है क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से दबाव है, लगातार बढ़ रहा है, अब तकरीबन 5% के आसपास है. लेकिन जो रेंज है आरबीआई की अभी भी उसके अंदर है जो, तो मुझे लगता है. और जो भी आप डेटा देखेंगे, टैक्स का डेटा देखें, चाहे जीएसटी कलेक्शंस का डेटा देखें, कार सेल्स या जो भी ऑटो सेक्टर में जो सेल्स हैं, तो सारा आपको पॉजिटिव साइड है. लेकिन चूंकि जो दुनिया में अनिश्चितता है, जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन है, अनसर्टेनिटी है, कहीं ना कहीं वो हमारे बाजार पे हावी है.
2: So today, do you expect that there was short covering in the market because we saw bounce back in the Nifty Bank which went up by almost 1%. PSU Bank Index also went up. Do you see value buying in the markets right now, even though if it's for one day?
4: I think, Arjun, what you're saying is I would agree more with the word value buying. I think people are also shifting more from small cap, medium, mid caps to the defensive, to the large caps. Probably looking at more secure, trying in these times of uncertainty, you tend to exit the stocks or the benchmarks where you see there could be more volatility. Obviously, the first in line to take hit is obviously the small caps and the mid caps. So probably I think the intent of the investor is to shift to the safer havens, and obviously then large caps are the best bet in these times of uncertainty.
2: Also, central banks are holding their meetings. RBI is going to conduct its monetary policy committee meeting from October 5 to 7, repo rate is 5.25%. Do you see rates being hiked and valuations change? Because banking incomes will also be impacted accordingly.
4: See, Arjun, more than that, I think before RBI takes a decision on the rates, on the repo rate, I think more than that, what is being watched is the decision what tonight we get on the decision taken by the Fed Reserve on its own interest rate, because the expectation is there is a

0: huge expectation that they would hike interest rates in US. And what happens is, and already if you look at the US bond yields, they're over 5% in since I think after 2023, it's for the first time that they have inched over 5%, the 10-year bond yield. And obviously that also puts pressure on Indian bond markets, also on the also indirectly on the Indian equity market, because then the FIIs, the foreign investors, tend to go and invest in the US market because the interest rates obviously are going to go up. And it is always said that treasury, US treasury bonds, are the most secure instruments, most secure instruments in the world.
1: सिद्धार्थ, क्षेत्रीय स्तर पे जैसा कि अर्जुन ने पहले अपना सवाल पूछा, मैं उसी स्तर पर आपसे बात करना चाहूंगी कि क्षेत्रीय स्तर पे अगर हम देखते हैं तो एक आम निवेशक, एक आम जो श्रोता जो हमारे प्रोग्राम को सुनता है, उनके लिए आप बताइए कि अभी कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर निवेश करना लाभकारी हो सकता है, या यूं कहिए कि समझदारी भरा हो सकता है.
0: नहीं देखिए, एक तो मैं पहली बात ये कहूंगा कि अगर आप इस समय इन्वेस्ट कर रहे हैं भारतीय बाजारों में या शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं
1: जी,
0: तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको, धैर्य के साथ आए, क्योंकि दुनिया में बहुत अनिश्चितता है और ये अनिश्चितता लगातार बढ़ रही है. और ये जो अभी तक एक फंडामेंटल्स, बहुत सारे जो फंडामेंटल चीजें हम मानते थे कि जब भी अनिश्चितता आती थी या तेल की कीमतें बढ़ती थी या वॉर आता था, तो ये हमेशा माना जाता था कि गोल्ड प्राइसेस हमेशा बढ़ती हैं. इस बार भी बढ़ी हैं, लेकिन उस अनुपात पे नहीं बढ़ा गोल्ड. इनफैक्ट बीच में जब अनसर्टेनिटी बढ़ी तो हमने देखा गोल्ड प्राइसेस नीचे भी आई. तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हाँ, क्योंकि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन हमारे साथ एक जो एक मुझे लगता है जो प्रॉब्लम है वो है क्रूड प्राइसेस, क्रूड ऑयल, जो कि हम 90% इंपोर्ट करते हैं. और क्रूड काफी सारी इंडस्ट्रीज के लिए, क्रूड ऑयल इज द रॉ मटेरियल, द मेस मटेरियल विच एक्ट्स एज रॉ मटेरियल फॉर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज. तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट रहेगा, और अभी वो लग रहा है कि रहेगा लंबे समय तक. सप्लाईज नहीं मुझे लगता इम्पैक्ट होगी, लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था पे भी इम्पैक्ट होगा. तो थोड़ा बहुत अगर आप भारतीय बाजारों में इन्वेस्ट कर रहे हैं या निवेश कर रहे हैं, तो थोड़ा लंबी अवधि, मतलब मेरा मानना है कि कम से कम 3 साल का मन बना के आए कि, मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगले साल बहुत मुनाफा हो भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं हो, क्योंकि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप अपने दिमाग में ये रख के आए कि थोड़ा आपको समय वेट भी करना पड़ सकता
1: है. क्योंकि ये भी कहा जाता है ना कि जब बाजार ढलान पर हो, तब खरीदारी, असल खरीदारी उसी वक्त होनी चाहिए.
0: हाँ, लेकिन प्राची होता क्या है कि जब भी आप देखेंगे कहीं अनिश्चितता आती है या कहीं डर होता है, भय होता है, तो हर आदमी बहुत अपने डिसीजंस को बहुत कैलकुलेटेड, या आदमी सोचता है थोड़ा और रुक जाते हैं, थोड़ी स्थिति जो काले बादल हैं वो छट जाए तब लगाएंगे. लेकिन मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, अगर मुझे आप मुझसे पूछेंगे तो मैं जरूर ऐसे वक्त को चुनूंगा निवेश करने के लिए. लेकिन हाँ, मैं ये भी साथ में कहूंगा कि बहुत बढ़िया से अपनी जो है फैक्ट फाइंडिंग बढ़िया से करें, अच्छी कंपनियां चुने. और आपने जिन क्षेत्रों की बात की, तो मैं वहां पे आजकल जो नया, एक तो जैसे सेमीकंडक्टर्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो नए क्षेत्र हैं, स्पेस है, डिफेंस है, ईवी है, बहुत बढ़िया आपने बोला. उसके साथ साथ फार्मा हमेशा एक डिफेंसिव क्षेत्र है, तो मैं बोलूंगा ऐसे अच्छा, एफएमसीजी को भी मैं हमेशा मानता हूं, क्योंकि इंडिया की जो कंज्यूमर स्टोरी है, जो कंजम्पशन स्टोरी है, वो पूरी तरह से इंटैक्ट है.
2: सो स्पीकिंग अबाउट इन्फ्लेशन इंपैक्टिंग इंटरेस्ट रेट्स अर्लियर एंड देन लिंकिंग इट टू एफएमसीजी, बिकॉज देयर मार्जिन्स हैव ऑलवेज बीन अफेक्टेड बाय बिजनेस inflation at the wholesale price index level, but that went up by 1.4% today. You said that it's a good sector to get into, especially long term. What are the other factors that one can look into when it comes to FMCG, fast moving consumer goods?
0: See, Arjun, I would say as far as fast moving consumer goods, I think it is always, it's an area which I think always is, you will always have, stays in green. I don't see very lot of challenges for...
2: Like pharmaceuticals.
0: Yeah, because FMCG, what do we mean by FMCG? What are the products which you, goods and products which we consume on a daily basis. So I think the demand in India is, the consumption demand is intact, and even there was a fear some about a month back or 15 days back that our monsoons have not fared that well. But I think as time passed on, even monsoons have been good. Agriculture sector is doing good. So I see the rural demand also intact, and inflation for us has still not passed on or has not grown so rapidly.

0: I personally believe that Indian IT industry is very robust, very strong, and already we are seeing there are a lot of questions being raised on the way we are seeing artificial intelligence or the uncertainty being created by artificial intelligence. So I think it's a good value buying if you ask me. It's but yes, one should wait and watch, and I think probably invest in small tranches.
1: अन्य खबरों पर भी सिद्धार्थ आपसे बात करेंगे, मगर उससे पहले जानते हैं कि दरअसल अन्य खबरें हैं क्या। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रति माह कर दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आज मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस निर्णय से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के दायरे में आ पाएंगे।
2: पुराना जो कैप था वो सितंबर 2014 में एस्टेब्लिश हुआ था, तब से अब तक एवरेज जो सैलरी है वो काफी बढ़ी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी है। आज एक रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय की एवरेज इनकम करीब करीब 23,000 रुपए पर मंथ है, जो कि पहले से करीब ढाई गुना ज्यादा बढ़ी है। भारत सरकार का इस पे एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रहेगा अबाउट 11,339 करोड़ रुपीज एवरी ईयर।
1: सिद्धार्थ, विकसित भारत की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए जो सामाजिक सुरक्षा की बात आती है, उससे ये किस तरीके से कनेक्टेड है और कैसे लाभान्वित करेगा?
0: नहीं, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन, जैसे मंत्री अश्विनी वैष्णव मंत्री जी ने भी बोला अपने अनाउंसमेंट में, क्योंकि अब अगर उसको 15,000 से 25,000 कर रहे हैं तो, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 25,000 तक जिसकी सैलरी है उसको अनिवार्य रूप से, जो सबसे बड़ी चीज यहाँ आती है कि कंपल्सरीली आपको ईपीएफओ के दायरे में लाया जाएगा, या कंपनी आपको ईपीएफओ का जो बेनिफिट है, जो सोशल सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करता है, उसमें आना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है उस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओवर द ईयर्स जैसा उन्होंने बोला 2014 में लास्ट रिवीजन हुआ था 15,000 तक, तो उसके बाद से बिल्कुल ठीक बात है कि अब सैलरीज बढ़ गई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, तो किसी भी एवरेज सैलरीज 23,000 जो उन्होंने जिक्र भी किया, तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है।
1: क्या ये बदलाव असंगठित क्षेत्र से जो संगठित क्षेत्र तक पहुंचने के लिए एक नया रास्ता, एक नई किरण के तौर पर हम देख पाएंगे इसे?
0: नहीं प्राची, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए प्राइवेट सेक्टर के लिए सरकार के जो सरकारी एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए तो एक पेंशन होती है उनकी, अब चूंकि थोड़ा उसका एक रूप प्रारूप बदल गया है, जो सरकारी एम्प्लॉयज को पेंशन मिलती है, तो न्यू पेंशन पॉलिसी आ गई है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में जो कर्मचारी जो लोग आज रोजगार पाते हैं उनके लिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और का जो ईपीएफ का जो सोशल सिक्योरिटी का जो ये नेटवर्क है या ताना बाना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपको पेंशन भी देता है, ना केवल आपको आपकी आपको आपका एक अंशदान जाता है जो आपको जब आप आपकी सेवाएं समाप्त होती हैं 60 साल पर जो पैसा मिलता है उस पर इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है, क्योंकि आज मुझे लगता है किसी भी सेविंग स्कीम में सोशल सिक्योरिटी की सबसे ज्यादा अगर इंटरेस्ट रेट है तो वो एम्प्लॉय ईपीएफओ की में ही मिलता है, तकरीबन 8% का इंटरेस्ट रेट है आज भी, तो वो उस लिहाज से इम्पोर्टेंट है। साथ हमने कवरेज बढ़ाया है, तो अब ज्यादा लोग, जैसा 51 लाख की जो आपने फिगर पढ़ी, तो उतने ज्यादा लोग और अब इस कवरेज के पात्र होंगे। जी,
3: In more news, India's current account deficit widened to $7 billion in July 2026 from $3.2 billion a year ago, primarily due to a higher merchandise trade deficit. As per data from RBI, the merchandise trade deficit rose by $3.5 billion to $31.7 billion in July on an annual basis. According to the data, net FDI inflows rose by $2.8 billion from a year earlier to $7.3 billion in July. Net foreign portfolio investment too recorded an inflow of $4.1 billion against an outflow of $2.5 billion in July 2025. The overall balance stood at a surplus of $20.8 billion as compared with $0.3 billion last July. And this is a very important macroeconomic data that we're addressing right now, Siddharthji. Current account deficit, even though it's widening because of our imports, especially oil, we're seeing that exports have gone up substantially as far as a current account is concerned. But to a great extent, isn't that being capital financed by our FCNR bonds that

0: Payments Corporation of India. It is distributed among payment ecosystem participants, including banks and payment application providers to support the operation and continued expansion of the UPI ecosystem.
1: आगे बढ़ते हैं. एशियाई शेयर बाजारों में आज दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लगभग 1.5% बढ़ा, जबकि जापान के निके सूचकांक में 0.7% की वृद्धि हुई. सिद्धार्थ, ये क्या इंगित करता है इस समय जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको देखते हुए?
2: नहीं, देखिए, जहां तक जापान की बात है, जापान में मुझे लगता है पहली बार अभी तक डिफ्लेशन था, तो पहली बार अब इन्फ्लेशन की वजह से मुझे लगता है जापानीज मार्केट्स में हमको इतना पॉजिटिव वो दिख रहा है. लेकिन हालांकि वहां पे अभी भी जो उनका पब्लिक एक्सपेंडिचर है, जो गवर्नमेंट का अभी भी जो एक्सपेंडिचर है, वो काफी हाई है. तो अभी मुझे लगता है अर्ली डेज, बट यस, देयर इज गुड न्यूज फॉर देम इन टर्म्स ऑफ एआई ऑटोमेशन इन इस तरह. और जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो रिफॉर्म्स वहां पे किए हैं, तो कंपनियों के रिजल्ट्स भी बेहतर आ रहे हैं. तो इस वजह से कहीं ना कहीं हमें वहां की मार्केट्स में एक जो है अपटिक दिख रहा है. साथ साथ जो कॉस्पी की आपने बात कही है, वो मतलब आप सबको पता है, क्योंकि दो ही बड़े कारण है उसके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो दो बड़ी कंपनियां हैं जो चिप्स बनाती हैं, तो वो उनकी वजह से वो जो है उस एक्सचेंज में बढ़त दिखती है.
1: जी.
0: Moving on to the crude oil market, global crude oil prices declined today. Brent crude was trading 1.2% down at $107.44 per barrel in intraday trade at a time of writing this report. Meanwhile, West Texas Intermediate crude was trading 1.8% lower at $103.93 per barrel.
1: भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 1% की बढ़त के साथ 1,52,362 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था, जबकि चांदी 1.1% की बढ़त के साथ 2,31,337 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. संक्षिप्त में मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगी सोने और चांदी के भाव पर.
2: मुझे लगता है प्राची, अभी गोल्ड और सिल्वर मुझे लगता है दोनों में ही हम रेंज बाउंड एक्टिविटी देख रहे हैं, और मुझे आने वाले समय में ऐसा कोई स्पर्ट नहीं दिखाई दे रहा अंटिल अनलेस यस मतलब ग्लोबली कोई ऐसी बड़ी क्राइसिस जो अभी है उसमें और स्थिति खराब हो जाए तो शायद गोल्ड. हालांकि ये मैं जरूर मानता हूं कि प्राइसेस बहुत ज्यादा मॉडरेट नहीं करेंगे, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स भी बहुत बड़े पैमाने पे अभी भी गोल्ड खरीद रहे हैं.
1: बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ कार्यक्रम में भाग लेने के लिए.
2: धन्यवाद आप दोनों का.
0: एंड बिफोर वी क्लोज द रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस, बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस राइज, सेंसेक्स गेन्स ओवर 300 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 23,218. न्यूजीलैंड पासेस लेजिस्लेशन टू इंप्लीमेंट एफटीए विद इंडिया एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन. एंड दैट्स इट इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा. फॉर नाउ, गुड बाय.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

मैं एक और एक डायरेक्टर के साथ काम काफी कर चुका हूँ, जैसे नासिर हुसैन, वो भी ऐसा करते थे कि गाना बनाने के टाइम में मेरे साथ वो शॉर्ट डिवीजन करते थे। कभी कभी वो क्या करते थे कि तुम गाना बनाओ, मैं शॉर्ट डिवीजन करूँगा। तो कभी कभी मुझे बोलते थे कि पहले शॉर्ट डिवीजन करके देता हूँ, तो पूरा शॉर्ट डिवीजन बताते थे और उस शॉर्ट डिवीजन से गाना निकलता था।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम है गीत मेरे मनमीत और मैं हूं आपके साथ रितिका।

तो दोस्तों, गीत मेरे मनमीत में आज बस इतना ही। अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और एआई तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के यशोभूमि में पांचवें सेमीकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने को वेतन सीमा 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रतिमाह कर दी है। संशोधित वेतन सीमा आज विश्वकर्मा जयंती से प्रभावित हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी, ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इसके बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाले डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार यह कार्रवाई की गई है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। तमिलनाडु में AIADMK विधायकों मारगाथम कुमारवेल और सत्यभामा के इस्तीफे के कारण रिक्त हुए आरक्षित मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के लिए कल नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। नामांकन पत्रों की जांच आज होगी जबकि 19 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। भारतीय तटरक्षक बल का 43वां कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इस 3 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह सम्मेलन मौजूदा और उभरती समुद्री सुरक्षा चुनौतियों, परिचालन तत्परता और संसाधन तैनाती, क्षमता वर्धन और बल के आधुनिकीकरण की योजना तथा राष्ट्रीय समुद्री रणनीति के अनुरूप

संगठनात्मक प्राथमिकताओं पर केंद्रित होगा। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि यह पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि यह पुरस्कार देश के महानतम कलाकार के लिए उपयुक्त सम्मान है। सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का तत्काल प्रभाव से 3 साल की अवधि के लिए पुनर्गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि पुनर्गठित बोर्ड में विनोद अनुपम, मनोज जोशी, हंसराज हंस, प्रीति जिंटा, पंकज त्रिपाठी, रिकी केज, सुनील शेट्टी, रूपा गांगुली और प्रियदर्शन सहित 18 सदस्य शामिल हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समय हुआ है 12:11 और 2 सेकंड। मैं हूं अंजू आपके साथ, कार्यक्रम लेकर आई हूं निशिगंधा और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz। और इस कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह कुछ अल्फाज लिए। मोहब्बत पर किसी का जोर नहीं चलता, मोहब्बत पर किसी का जोर नहीं चलता, ये वो परिंदा है जो बस अपनी मर्जी से ही उड़ता है।

धड़कनें तो चलती थी पर दिल में कोई हलचल नहीं थी। धड़कनें तो चलती थी पर दिल में कोई हलचल नहीं थी। हम तो सिर्फ जी रहे थे क्योंकि जिंदगी नहीं थी कुछ भी तेरे बगैर।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

मेरी नजरों से देखोगे तो ये कायनात हसीन लगेगी। मेरी नजरों से देखोगे तो ये कायनात हसीन लगेगी, क्योंकि जहां तुम न हो वो दुनिया तो हमें भी वीरान ही लगेगी।

0: महलों की ख्वाहिश नहीं है इस दीवाने दिल को, महलों की ख्वाहिश नहीं है इस दीवाने दिल को, क्योंकि जहां तुम साथ हो सपनों का महल तो वहीं बन जाता है।
1: एक

हर ख्वाब अधूरा है अगर उसमें तुम नहीं हो, हर ख्वाब अधूरा है अगर उसमें तुम नहीं हो, और जिसमें तुम हो उस ख्वाब से हम कभी जागना नहीं चाहेंगे।

क्या करूं कि बंद आंखों में भी बस तेरा ही चेहरा नजर आता है, क्या करूं कि बस बंद आंखों में भी बस तेरा ही चेहरा नजर आता है। सोचूं तो तू ख्याल में है, और सोऊं तो तू मेरे ख्वाब में है।

दोस्तों अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और ये कार्यक्रम का आखिरी गीत था। आपसे मुलाकात होगी 1:10 पर। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और एआई तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने को वेतन सीमा 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रतिमाह कर दी है। संशोधित वेतन सीमा आज विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इसके बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार यह कार्रवाई की गई है। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके अवैध और बलपूर्वक कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट और निरंतर मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत बिना किसी कानूनी आधार वाले पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को पूरी तरीके से खारिज करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविच्छेद्य हिस्से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1,40,00,000,000 भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इस समझौते से न्यूजीलैंड से भारत को होने वाले 27% निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। तमिलनाडु में AIADMK विधायकों मारगाथम कुमारवेल और सत्यभामा के इस्तीफे के कारण रिक्त हुए आरक्षित मधुरांतकम और धारापुरम विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के लिए कल नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। नामांकन पत्रों की जांच आज होगी, जबकि 19 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। भारतीय तटरक्षक बल का 43वां कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इस 3 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि यह पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा।

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. अंजू है एक बार फिर से आपके साथ कार्यक्रम गीत सुहाने लेकर. एक बार फिर से आप सभी को मेरा नमस्कार. यकीन मानो तुम सामने आते हो तो हम पलकें झपकना भी भूल जाते हैं, और कहीं तुम ओझल ना हो जाओ इसलिए तुम्हें इन आंखों में ही छुपा लेते हैं.

रात भर जागते हैं इसी कश्मकश में गालिब, रात भर जागते हैं इसी कश्मकश में गालिब, कि आज हमारे सपनों में कौन आने वाला है।

जमाने भर के सारे वाके भूल बैठे हैं हम, जमाने भर के सारे वाके भूल बैठे हैं हम, बस बस वो एक तेरा मिलना और मुस्कुराना याद है हमें।

थक चुकी हैं निगाहें सुने रास्तों को तकते तकते, थक चुकी हैं निगाहें सुने रास्तों को तकते तकते, जो मुड़कर मेरी बाहों में आए वो राह दिखा मेरे महबूब को।

नींद से कहो कि अब हमसे कोई रिश्ता ना रखे, नींद से कहो कि अब हमसे कोई रिश्ता ना रखे, क्योंकि हम सोना भी चाहें तो उनकी याद हमें सोने ही नहीं देती।

होश में रहना अब गवारा नहीं इस दीवाने दिल को, होश में रहना अब गवारा नहीं इस दीवाने दिल को, क्योंकि जब से तेरी मदहोश आंखों को देखा है तब से हम जीना ही भूल गए।

लोग पूछते हैं मुझसे मेरी बेचैनी का सबब, लोग पूछते हैं मुझसे मेरी इस बेचैनी का सबब, अब कैसे समझाऊं कि तुम्हारे बिना ये दिल कहीं लगता ही नहीं।

दूसरे कार्यक्रम का आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कहीं जाएगा मत, जल्द मिलेंगे। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के यशोभूमि में पांचवे सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। तीन दिन के सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके अवैध और बलपूर्वक कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट और निरंतर मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत बिना किसी कानूनी आधार वाले पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को पूरी तरीके से खारिज करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविच्छेद हिस्से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की जगदलपुर स्थित विशेष अदालत ने झीरम घाटी कांड के सभी 10 दोषियों को कल फांसी की सजा सुनाई। वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में झीरम घाटी के माओवादियों के हमले में कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं सहित 27 लोगों की मौत हो गई थी और 35 अन्य घायल हुए थे। एनआईए ने इस मामले में 11 माओवादियों को गिरफ्तार किया था। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कल से 32वां अखिल भारतीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन शुरू हो गया। दो दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन राज्यपाल रामेन डेका ने किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि स्थानीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक सशक्त, पारदर्शी, समावेशी और तकनीक सक्षम बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने आज स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत।

0: श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना 2047 तक विकसित भारत की महत्वाकांक्षा के लिए एक आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक अनिवार्यता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आज 3 वर्ष पूरे कर लेगी। इस योजना के अंतर्गत 30 लाख लाभार्थियों के पंजीकरण किए जाने का लक्ष्य पूरा हो चुका है। योजना का उद्देश्य 18 चिन्हित व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। श्री शेखावत ने लोगों से ई नीलामी में शामिल होने का आग्रह किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila.

दोस्तों, समय हुआ है 2:11 और 3 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। मैं अंजु एक बार फिर से करती हूँ आप सभी का स्वागत। आप सभी को मेरा नमस्कार और शुरुआत बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ।

अल्फाज की जरूरत ही कहाँ होती है इस मोहब्बत में, अल्फाज की जरूरत ही कहाँ होती है इस मोहब्बत में, जब होठ चुप है तो ये दिल दिल को सुन ही लेता है।

लोग तो खो जाते हैं मंजिल की तलाश में अक्सर, लोग तो खो जाते हैं मंजिल की तलाश में अक्सर, अब हमारी तो मंजिल भी तुम ही हो, तो फिर जाना कहाँ।

दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है रात सुरमई, अंजू है आपके साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz।

आकर रोज़ तड़पाना अच्छा नहीं, ख्यालों में आकर यूँ रोज़ तड़पाना अच्छा नहीं, याद आने से बेहतर है कि तुम आ ही जाया करो।

नजरें तो रोज हजारों चेहरों को देखती है, नजरें तो रोज हजारों चेहरों को देखती हैं, पर ये दिल दिल गवाही देता है कि हम सिर्फ तुम्हें ही चाहते हैं।

बस तो अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आगे का कार्यक्रम लेकर आएंगी भारती, हमराही में रहेंगे आपके साथ। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार, शुभ रात्रि।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के यशोभूमि में पांचवें सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। तीन दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है।

नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कल से 32वां अखिल भारतीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन शुरू हो गया। 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन राज्यपाल रामेन डेका ने किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। तमिलनाडु में AIADMK विधायकों मारगाथम कुमार वेल और सत्यबामा के इस्तीफे के कारण रिक्त हुए आरक्षित मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के लिए कल नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। नामांकन पत्रों की जांच आज होगी जबकि 19 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके अवैध और बलपूर्वक कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट और निरंतर मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविच्छेद्य हिस्से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम हमराही की और आप सबका करती हूँ स्वागत आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर। तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत के साथ।

रात अभी बाकी है, कुछ अनकहीं बातें अभी बाकी हैं। कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं और खामोशियां दिल की सारी कहानी कह जाती हैं।

का रिश्ता कोई हिसाब नहीं मांगता, जहां मन को अपनापन मिल जाए वहीं से जिंदगी ही रहा थोड़ी और खूबसूरत लगने लगती है।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और प्रोग्राम है हमराही। दिल की आवाज बड़ी अनोखी होती है, वे कभी शब्दों में नहीं बोलता, फिर भी उसकी हर कही बात महसूस होती है। कुछ रिश्ते समझे नहीं जाते, बस महसूस किए जाते हैं।

जब दिल में किसी याद का उजाला हो तो बाहर के चिराग भी फीके लगने लगते हैं। कभी एक याद ही पूरी रात को रोशन कर देती है, और अभी एक एहसास सारी खामोशी को अपना बना लेता है।

रिश्तों की खूबसूरती बड़े वादों में नहीं होती, बल्कि उन छोटी छोटी बातों में होती है जिन्हें याद करके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान आ जाए। और इसी के साथ मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति और छोड़कर जा रही हूँ बहुत ही प्यारे गीत के साथ। समय कह रहा है कि अब आपसे विदा ले ली जाए, लेकिन जल्द हाजिर होंगी 4:10 पर लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के यशोभूमि में पांचवें सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। तीन दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का

0: जो नियम है उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉइज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
1: भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की उम्मीद करता है। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके अवैध और बलपूर्वक कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट और निरंतर मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविच्छेद्य हिस्से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। तमिलनाडु में AIADMK विधायकों मारगाथम कुमार वेल और सत्यभामा के इस्तीफे के कारण रिक्त हुए आरक्षित मदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के लिए कल नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। नामांकन पत्रों की जांच आज होगी जबकि 19 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले आज से शनिवार तक भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे भारत के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। यात्रा के दौरान 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण के लिए भारत से सहायता लेने पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। श्री शेखावत ने लोगों से ई नीलामी में शामिल होने का आग्रह किया। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि यह पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate SEMICON India 2026 today at Yashobhoomi in New Delhi. The Prime Minister will also address the gathering on the occasion. The three-day conference and exhibition is being organized on the theme Silicon to Synth Systems, Building the Ecosystem. It will bring together global and Indian companies, policy makers, investors, researchers, startups, academic institutions and students from across the semiconductor and electronics value chain. Ahead of the inauguration, the Prime Minister chaired a semiconductor roundtable with the leading global CEOs in New Delhi yesterday. Mr. Modi stressed the need for close cooperation between the government and industry to strengthen India's semiconductor sector. He also called for greater industry participation in skill development, innovation, artificial intelligence and quantum computing. India has rejected the so-called Pakistan-China Boundary Joint Commission, saying that Pakistan has no locus standi to enter into arrangements concerning Indian territory under its illegal and forcible occupation. Responding to media queries, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said, "The ministry has seen reports in this regard and India's position on this matter is clear and consistent." He said, "There is no boundary between Pakistan and China." Mr. Jaiswal said, "New Delhi

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का। आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ प्रोग्राम अरुणिमा में। मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम अरुणिमा की गीत, बहुत प्यारे से गीत के साथ। गीत है फिल्म बाप बेटी से, लता मंगेशकर की आवाज में, संगीतकार मदन मोहन।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म विधाता से। गीत को अपनी आवाज से सजाया है सुरेश वाडकर और अनवर ने। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, गीतकार आनंद बख्शी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है अरुणिमा। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म धर्म कांटा से मोहम्मद रफी और भूपेंद्र की आवाज में, संगीतकार नौशाद, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी।

और प्रोग्राम अरुणिमा की अंतिम प्रस्तुति सुनते हैं फिल्म प्रेम धर्म से लता मंगेशकर की आवाज में, और ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है। मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति, इस गीत के साथ आपको छोड़ के जा रही हूँ। जल्द मुलाकात होगी यानी 5:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम भूर सुहानी। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में पांचवें सेमिकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। तीन दिन के सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की उम्मीद करता है। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीना सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके अवैध और बलपूर्वक कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट और निरंतर मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविच्छेद्य हिस्सा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा आज विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीस की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: तमिलनाडु में AIADMK विधायकों मरगाथम कुमारवेल और सत्यभामा के इस्तीफे के कारण रिक्त हुए आरक्षित मंदुरांतकम और धारापुरम विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के लिए कल नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। नामांकन पत्रों की जांच आज होगी, जबकि 19 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की जगदलपुर स्थित विशेष अदालत ने झीरम घाटी कांड के सभी 10 दोषियों को कल फांसी की सजा सुनाई। वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में झीरम घाटी में माओवादियों के हमले में कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं सहित 27 लोगों की मौत हो गई थी और 35 अन्य घायल हुए थे। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत। श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले आज से शनिवार तक भारत की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे भारत के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। नेपाल के वित्त सचिव घनश्याम उपाध्याय ने बताया कि श्री वागले वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Semicon India 2026 today at Yashobhoomi in New Delhi. The Prime Minister will also address the gathering on the occasion. The three-day conference and exhibition is being organized on the theme Silicon to Systems, Building the Ecosystem. It will bring together global and Indian companies, policy makers, investors, researchers, startups, academic institutions and students from across the semiconductor and electronics value chain. Ahead of the inauguration, the Prime Minister chaired a semiconductor roundtable with leading global CEOs in New Delhi yesterday. Mr. Modi stressed the need for close cooperation between the government and industry to strengthen India's semiconductor sector. India has rejected the so-called Pakistan-China Boundary Joint Commission, saying that Pakistan has no locus standi to enter into arrangements concerning Indian territory under its illegal and forcible occupation. Responding to media queries, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal reiterated that the entire union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh have been and will always remain integral and inalienable parts of India. India called upon Pakistan to immediately vacate from areas under its illegal and forcible occupation instead of engaging in such theatrics. BJP will run a month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan from today to mark Prime Minister Narendra Modi's birthday, with focus on highlighting his commitment to public service and encouraging people, particularly the youth, to undertake acts of service. The campaign will also mark 25 years of Mr. Modi taking oath as the Chief Minister of Gujarat on October 7, 2001. The Prime Minister's birthday will be observed as Seva Divas today, with blood donation camps organised across the country. An Ashirvad Kadia program will also be held this evening, with families lighting lamps as a gesture of gratitude for his 25 years of public service. In Tamil Nadu, today is the last day for filing nominations for the by-elections to be held in Madurantakkam and Dharapuram Assembly constituencies. Polling will be held on the 6th of next month, while the counting of votes will take place on the 9th of next month. The constituencies felt vacant due to the resignations of AIADMK MLAs Maragatham Kumaravel and Satyabhama. Nominations will be scrutinized tomorrow, and the last date for the withdrawal of nominations is the 19th of this month. An e-auction of mementos and gifts received by Prime Minister Narendra Modi will commence from today. Addressing the media in New Delhi, Minister of Culture and Tourism Gajendra Singh Shekhawat said around 1,500 items have been kept for auction this year, including paintings, textiles, statues, antiques and handicraft artworks representing India's diverse cultures, faiths and traditional craftsmanship. A total of 1,498 mementos are being offered in this edition. PM Vishwakarma scheme will complete 3 years today. The scheme has achieved the milestone of registering 30 lakh beneficiaries under it. The scheme was launched by Prime Minister Narendra Modi in 2023. The objective of the scheme is providing end-to-end support to traditional artisans and craftspeople engaged in 18 identified trades. The 43rd edition of the Indian Coast Guard ICG Commanders Conference will begin in New Delhi from today. The Ministry of Defence said that the three-day conference will be chaired by Minister of State for Defence, Sanjay Seth. The Ministry noted that the conference will focus on maritime security challenges, operational readiness, capability enhancement, force modernization, and priorities under India's National Maritime Strategy. Today is Telangana Liberation Day. On this day in 1948, the Hyderabad princely state merged with the Indian Union. Commemorating this historic event, the central government officially started Liberation Day celebrations in 2022. The celebrations will be held at the Secunderabad Parade Grounds. Vice President C.P. Radhakrishnan will be attending as the chief guest for the main event held today. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall in Bihar, Sub-Himalayan West Bengal, Kerala, Tamil Nadu and parts of Northeast India today. In men's cricket, India will face Afghanistan in the third and final T20 international of the series at Arun Jaitley Stadium in Delhi at 7:30 p.m. today. And that is the end of this news bulletin.

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस भजन के साथ।

आज अपने दिल के उस रास्ते पर चलें जहां उम्मीद हमारा साथ दे। मंजिल कितनी भी दूर हो, शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से ही होती है।

प्रकृति हमें हर सुबह एक नया संदेश देती है। पेड़ की हर डाली पर नई कोपलें, हर फूल में नई मुस्कान और हर किरण में नई ऊर्जा। जीवन भी ऐसा ही है, हर दिन हमें फिर से खिलने का अवसर देता है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रोग्राम है भोर सुहानी। सुबह सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं बल्कि नए विचार नए संकल्पों की शुरुआत है। मन में विश्वास हो तो साधारण सी सुबह भी जीवन में उम्मीद की रोशनी भर देती है।

ये ठंडी हवा और खुली फिजा जैसे हमें याद दिलाती है कि जीवन को बोझ नहीं एक खूबसूरत सफर की तरह जीना चाहिए। हर सांस में प्रकृति का शुक्रिया और हर कदम में आगे बढ़ने का विश्वास हो तो जीवन थोड़ा सा सरल हो जाता है।